आज रंग हरे ऊपर खानदान में हम पहने सूट रंग हराम किए हुए, ये किसने आपको कहा आपको सूट नहीं करता? महज सुप्रस्त नहीं, अगर हम में से कोई काला पहन ले तो ये हो जाता है वो हो जाता है, अपने पास से दीन घड़ लिया। किसी की मौत का इख्तियार किसी रंग के पास है? फजाल तुम मिनहु हरामं व हलाला, खुद हराम और हलाल। इसी तरह हमारे मुल्क में भी बाज खाने ऐसे होते हैं कि जो लड़के नहीं खा सकते, वो प्रेग्नेंट के पेट में लड़का तो जगह पर गई तो कुछ औरतें मालूम नहीं क्या दरवाजा खोल दिया तो किसी ने कहा नहीं नहीं अंदर नहीं जाए, कुछ पढ़ रही है। उनका अच्छा पढ़ रही होगी, ऐसी क्या चीज है कि जिसको सिर्फ कुछ लोग पढ़ सकते हैं और दूसरों पे हराम है पढ़नी। फिर उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि उसमें हामिला औरतें भी नहीं जा सकती, क्या पता उनके पेट में लड़का हो तो बैठ सकते। ये क्या पाबंदियां हैं? जो पाबंदियां हैं वो तो और उसकी सेटिस्फेक्शन खुद साख्ता पाबंदियों से करते हैं। कुल अल्लाहु अज़िना लकुम, दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हें ये दीन खुद घड़ने की इजाजत दी है तुम? अम अल्लाह तफ्तरून, या तुम अल्लाह पे झूठ घड़ रहे हो, अल्लाह से ये बातें मंसूब कर रहे हो, अल्लाह के नाम लगा रहे हो। वमा ज़न्नुल लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा, जो लोग अल्लाह पे झूठा इफ्तरा के दिन पर रुमा क्या। देखें कि अपने बारे में जरा सोचें, कोई आप पर नाम लगाए, कोई काम आपने कहा नहीं कहे नहीं आपने कहा था, कोई काम आपने किसी को कहा और वो कहे नहीं आपने कब कहा था, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या कहेंगे? खुश होंगे उससे? ऐसे शख्स के साथ आप क्या मामला करते, उस वक्त आपकी कैफियत क्या होती है कि जब आपने मसलन किसी को कुछ लाने को कहा और वो बैठा रहा और थोड़ी देर बाद कहे आपने कब कहा था? जरा सोचो उस वक्त कैसे फील करते हैं। और अगर आप किसी को मना करें कि देखो मेरे पीछे से दरवाजा नहीं खोलना, बच्चों को कह के आते हैं मसलन, फ्रिज नहीं खोलना, ये मत खाना, और आप जाते हैं तो बर्तन खाली पड़े हो, कहीं नहीं आपने तो कोई नहीं मना किया था, यानी एक काम खराब किया ऊपर से इल्जाम भी आपको देनी, आपने तो नहीं कहा था। तो जब भी कोई शख्स आप पे झूठ बांधता है, झूठ बांधने का मतलब क्या है, यानी झूठी बात आपसे मंसूब करता है कि आपने कहा था या आपने नहीं कहा था, तो उस वक्त सख्त इंतकामी कैफियत पैदा होती है ना। इसी कैफियत को जरा रख लीजिए और फिर इस आयत को पढ़िए, वमा ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه, क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में जो अल्लाह पे झूठ घड़ते हैं कि उनके साथ क़यामत के दिन होगा क्या। अल्लाह से झूठी बातें मंसूब करते हैं, अल्लाह ने इसको हलाल किया इसको हराम किया, हालांकि अल्लाह ने नहीं किया था, किया खुद होता, नाम अल्लाह का लगाते हैं। इन सब बातों के बावजूद अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को मोहलत देते हैं कि वो अपनी इस्लाह कर ले, लेकिन इंसान तवज्जो नहीं करता। इन्ना अल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, यानी उसने मुफीद और जरूरी चीजें हलाल की, या वो लोगों को फौरन नहीं पकड़ता। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ने फौरन पकड़ा नहीं। आप देखें कि अल्लाह पे झूठ घड़ने की बातें या अल्लाह के बारे में गलत गुमान कायम करने वाली बातें जो है उनमें से कई किस्म की बातें हो सकती है ना। मसलन कोई कहे इस जमीन आसमान को अल्लाह ने नहीं पैदा किया, या अल्लाह के अलावा फुलां और फुलां भी शरीक था, या अब भी अल्लाह ताला के फैसलों में फुलां फुलां शरीक होता है, ये सब चीजें अल्लाह को गजबनाक करने वाली। वमा तकूनु फी शानिन, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जिस हाल में भी होते हो, वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन, और कुरान में से जो कुछ भी पढ़ते हो सुनाते हो पढ़ के, वला तअमलून मिन अमलिन, और लोगो तुम भी जो कोई अमल करते हो, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन, मगर हम तुम पर गवाह होते हैं, हम तुमको देख रहे होते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान
پڑھنے کی حالت کو خاص طور پر

0: Mehran Iron Store Halani, Wholesale Depot, a name to be trusted.
1: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Highway, Halani.
1: Rabte Lai, Proprietor Gulam Nabi 0300-3204-372, Ai 0242-460100.
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा बंसा नालो वठी तक
4: पाकिस्तान है एन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और याफादियरे से ही जरूर जा मिले दाने में तिक्की से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0 53
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है।

0: सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
1: अस्सलाम वालेकुम। अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा, छो परेशान आई?
1: अदा, नओ दुकान खोलियो तम, पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा, दुकान जी मशहूरी कराई थई?
1: न अदा।
3: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा, जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03008-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इजलास में कयल फैसला नतीजे ॾींदड़ साबित थींदा। खिते में अमन कायम करण लाइ समूरनि इलाक़ाई मुल्कनि खे गॾिजी कदम खणण जी ज़रूरत आहे। ॿियनि मुल्कनि लाइ बि मुक़रर शर्तनि तहत मुआदे में शामिल थियण जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि।
2: तुर्किया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं मुलाकातूं। पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में दिफ़ाही सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब जे बचाव वारे वज़ीर शहज़ादे ख़ालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद। तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर हाकान सां मुलाक़ात। तुर्किया जे क़ौमी दिफ़ा वारे वज़ीर ऐं तुर्क जनरल स्टाफ जे सरबराह जनरल सां बि फील्ड मार्शल जूं मुलाक़ातूं। मुलाक़ातनि दौरान गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ते बतरफ़ी दिफ़ाई सहकार ऐं लकाई सलामती जी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। ISPR मूजिब आर्मी चीफ जूं मुलाक़ातूं टिनी मुल्कनि विच में भाईचारे जे मज़बूत लाॻापन ऐं वधंदड़ दिफ़ाई सहकार जी अकासी कनि थियूं।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ईरानी सदर मसूद पज़ेशान में मुलाक़ात। बिश्कक में शंघाई तावन तंज़ीम जे सरबराही इजलास ऐं मौक़े ते थियल मुलाक़ात दौरान पाक ईरान ॿितरफ़नि लाॻापन ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार समेत ताज़ी सूरताल ते ॻाल्हियूं। ॿितरफ़नि लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ऐं मज़बूत बणाइण जो बि अज़म। इजलास में ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराची ऐं चीनी परडे॒ही वज़ीर बि विच में मुलाक़ात थी।
2: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी में तेज़ बरसाति रोड रस्ता तलाउ जो ॾेख ॾियण लॻा। E11 नालो भरिजण सबबि पाणी आबादी में दाख़िल। ली नाले में बि ख़तरनाक हद ताईं वाधि। स्कूलनि में मोकल जो ऐलान। ज़िले इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त रावलपिंडी में मजमू तौर 190 मिलीमीटर बरसाति रिकॉर्ड कई वई। नालाली में कटियारिया वटि पाणी जी सतह 29 फुटनि खां वधी वई। गवालामुंडी पुल ते पाणीअ जी सतह 24 फुटनि ताईं पहुची वई।

0: का वकार है।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो असली जी जान चारो मसालो जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारो मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारो मसालो ढोर सेहतमंद जी जान चारो मसालो जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रिया और की महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69

0: और वो पाकिस्तानी कंटेंट हो, बॉलीवुड के अलावा और कोई कंटेंट हो, तब तो वो प्ले हो सकता है. अदरवाइज अगर बॉलीवुड कंटेंट होता है तो हम प्ले नहीं करेंगे. इसके अलावा आपका गाना सैड नहीं होना चाहिए. अगर आपके आपका जो गाना है वो रोना धोने वाला हुआ तो मैं आपसे सुन तो लूंगी लेकिन प्ले नहीं करूंगी. ठीक है, ये होगा. और एक अच्छा सा गाना मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सुनाएंगे. फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? आसिफ अली चाचर. अच्छा सा गाना सुना दें.
1: अच्छा, आपको गाना सुना दूंगा. लाड़काना में ब्रेक चल रही है.
0: अच्छा, लाड़काना में ब्रेक चल रही है, ये तो बहुत गलत बात है. वेरी बैड.
1: क्या करो,
0: चले जब तक आप गाना सुनाएंगे वहाँ तक स्ट्रीमिंग पहुँच जाएगी, क्योंकि स्ट्रीमिंग जो है ना 30 सेकंड लेट होती है. ऐसे नहीं ना, गा के सुनाए ना, सुर लगाओ गाना सुनाओ, इसीलिए तो है सेगमेंट कि हम गा के सुनाए. ओके, किसी को डेडिकेशंस हैं? ओके जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.

0: वेरी नाइस, किसी को डेडिकेट करना है?
1: डेडिकेट करना है।
0: हाँ जी करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और ये रहा गाना।

वेरी नाइस जलाने वाला गाना, और जलाने वाले गाने के बाद हम प्ले करेंगे नेक्स्ट सॉन्ग जो के मुझे सुना दिया था कॉलर ने, तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

0: तुमको याद आएंगे वो बहारे वो तमाम झुके झुके बादलों नीचे मिले थे हम तुम इखलाक अहमद की आवाज में,
1: किसकी आवाज में?
0: इखलाक अहमद की आवाज में,
1: अहमद रुश्दी की आवाज में नहीं,
0: मेरे ख्याल में शायद इखलाक अहमद, देख ले चेक कर ले।
1: नहीं, असल में ये अहमद रुश्दी का सॉन्ग है।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है
1: ठीक है। और कुछ कहेंगे
0: जी? तो माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई फराज भी यहाँ पर सुनने जमान भाई है, अजीदुल्ला और ये अपना ताहिर लुंड और उनके बादशाह भी सुन रहे हैं आपको।
1: ओके, सबको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में।
0: जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको सलाम कहूंगा और आपके लिए खूबसूरत दुआ के अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
1: थैंक यू सो मच जी। और ये रहा गाना।

0: प्यार।
1: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी। कौन कहाँ से?
2: मोहम्मद नवाज बल्दी।
1: मोहम्मद नवाज बल्दी कहाँ से बात कर रहे हैं? ओके, प्रोग्राम सुनते हैं, गाना वाना सुनाएंगे?
2: जी क्यों नहीं सुनाएंगे, जो आप कहेंगे वही सुनाएंगे।
1: ओके सुना दें।
2: उर्दू है यासिन जी?
1: जी
2: उर्दू नहीं है यासिन जी,
1: जो आपका दिल करे।
2: चलो ठीक है तो उर्दू कर देते हैं।
1: ओके सुना दें।
2: सुनो सुनो बोलो बोलो, मेरा तो उसे दिल आ गया, जीने का मजा आ गया आ गया आ गया। सुनो सुनो उर्दू मूवी है,
1: चलें ठीक है, मैं बिल्कुल सर्च करती हूँ उसको, हम चलाते हैं जी। थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे? ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। एंड हियर कम्स द सॉन्ग।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध काबीना ए ऑफिस काबीना के इदारे की शक्ल देने की मंजूरी दई छी। ए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस भी 1,000 रुपया मुकर्र। वे वजीर सैद मुराद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना जो इजलास। सैद मुराद अली शाह है तो ई ऑफिस वाले निजाम के शुरुआती तौर 10 खातन से लागू किया वो।
2: तुर्किया इसराइली वजीर आजम के दुनिया लाए खतरो करार दई छो। तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फिदान है तो गजा में नसलकशी करने बाद इसराइली वजीर आजम इंसानियत जो दुश्मन बणज चुको है। आलमी बिरादरी नेतन यायो जो पॉलिसियो रोकने लाए हंगामी बुनियादन से कदम खणे।
1: मेहर भरसा चाणे बिरादरी के बिन धुरी में पुराने तकरार का झेड़ो। नौजवान कतल 3 जणा जख्मी। गोठ हासिल खोसो में चाणे बिरादरी के बिन धुरी में हलंदड़ पुराने तकरार का झेड़ो थो। फायरिंग में 35 वरन जो सजाद वालिद बख्शर चांडियो कतल। बे दूजा इम्तियाज चांडियो वाहिद बख्श चांडियो गुलाम मुस्तफा चांडियो लठियों लगन सबब सख्त जख्मी।
2: उडेरो लाल के गोठ हाजी जान मोहम्मद हिंगोरो में उस्ताद के खोट खिलाफ गोठाणन शागिर्दन जो एतजाजी मुजाहरो। गोठाणन जो चवण है 150 शागिर्दन लाए सिर्फ एक उस्ताद है। उस्ताद की खोट सबब शागिर्दन की तालीम मुतासर थी रही है। उस्ताद मुकरर करे परेशानी खत्म कई वे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे। सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो।
1: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 आई तौकीर अहमद 0306 16 23 793।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301 399 2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

नाइस प्रोग्राम. नेक्स्ट मैसेज में मुझे सिर्फ इतना ही रिसीव हुआ है. थैंक यू सो मच सफदर बलोच हमारे साथ मौजूद है. शेर लिखते हैं, लफ्जों के तीर से यूं ना मारा करो ए जालिम, कुछ तो रहम खाया करो, नाजुक दिल है शीशे का.

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर रिसीव करेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: क्या हाल है भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं रोड़ी से बात कर रहा हूँ.
0: रोड़ी से बात कर रहे हैं? रोड़ी से कौन?
1: मीरानी.
0: मीरानी बात कर रहे हैं. ओके, प्रोग्राम सुनते हैं.
1: जी.
0: कौन सा प्रोग्राम है?
1: मस्ती वाला चिल.
0: नहीं, मस्ती वाला चिल नहीं है, सॉरी. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. 0000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो कॉल कीजिए. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं पुराना
0: लिखना. ओके, अच्छा मुझे बताएं, प्रोग्राम सुनते हैं?
2: जी भाजी, आपको खुद मालूम होगा कि हम आपके लिसनर हैं, पुराने लिसनर हैं, न्यू लिसनर नहीं है.
0: पुराने लिसनर हैं, न्यू लिसनर नहीं है, ठीक है. प्रोग्राम सुनते हैं
2: भाजी, टाइम मिलता है तो सुनते हैं, लेकिन नसरूफ साथी बैठ के खुशी होती है ना. आज जो है ना, नसरूफ नहीं था, टाइम मिला तो आपका शो सुन रहा था. चल,
0: मतलब आज सुन रहे हैं ना?
2: जी जी हाँ.
0: तो टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे?
2: जी भाजी, आपको तो मालूम है हम इस बात में वीक हैं, कमजोर हैं, और जो आप बड़े मुश्किल कंप्यूटर आते हैं, इस वजह से हम तो, लेकिन ऐसा तो प्रोग्राम में आप करते हैं.
0: चलें ठीक है, थैंक यू सो मच. फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें. 0000113488

0: एक और कॉलर चेक करेंगे. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद हनीफ बोलेंगे.
0: मोहम्मद हनीफ प्रोग्राम सुन रहे हैं? टंग ग्रेसर बोलेंगे.
1: प्रोग्राम सुन रहा हूँ.
0: तो टंग ट्विस्टर बोलेंगे?
1: बताओ.
0: आपने कहना है टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी.
1: क्या बोला था?
0: टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी.
1: अच्छा,
0: हाँ
1: ये हमारे घर में.
0: चले फिर, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अच्छा, वही लोग कॉल करें जो टंग ट्विस्टर बोले या बोलेंगे, बोलना चाहते हो. ठीक है, नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन किधर से?
2: मोहम्मद इस्माइल, बुलशहर से.
0: कहाँ से?
2: बुलशहर है.
3: और
0: नहीं, हम होल्ड नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच. 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर. हेलो.
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
4: यार, गुलाब एयरपोर्ट.

0: कल कुछ नीचे सोचना थे सोचगा जी अज बरस पे कल होना बस
1: ओके जी गाना चेंज करते हैं जी साथ साथ और 03000113488 इसके ऊपर आप लोग की कॉल्स बहुत सारी

0: It's 12:30 PM. This time check.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
7: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: शासक आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स जो कि मुझे रिसीव हो चुके हैं जी, और कमेंट्स हमें कर दिए हैं नजीर खोसो ने बहुत सारे, और लिखते हैं कि दुनिया में कोई काम ना अच्छा है और ना बुरा है, बल्कि इंसान की नीयत अच्छी होती है या बुरी होती है। बंदा अगर बद हो जाए तो काम बद हो जाते हैं, और बंदा अगर नेक हो तो वही काम नेक बन जाते हैं। वाओ,
1: रास आ गया नंगे पैर फिर दी नुजोग रास आ गया।
0: नजीर खोसो, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा
1: सजना दा दिल तोड़ ला
0: 03000113488 के ऊपर आप लोगों की कॉल्स लेंगे हम, और साथ में हम गाना चेंज करेंगे, और मेरे ख्याल से हम गाना प्ले करेंगे, मैशअप सॉन्ग प्ले करते हैं जी, मैशअप सॉन्ग सुनते हैं, एंड मैशअप सॉन्ग के साथ ही हम आगे चलते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: कुछ मैं आता नहीं।
1: अगर जी नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं। हेलो हेलो। ओके जी हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हमें चेक करेंगे कि क्यों नहीं आ रही है। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: जी मैं अली रजा।
1: अली रजा कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सखर से।
1: सखर से बात कर रहे हैं, ओके। पहली दफा कॉल की है?
2: जी जी।
1: अच्छा मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे? हेलो, नहीं सुना
2: जी।
1: टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे? ओके, मुझे आपकी आवाज कुछ समझ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन आ रहा है और भाई है भी कंफ्यूज बात करने में। हेलो, नेक्स्ट कॉलर। हेलो,
3: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर, दर्द किधर से आ रही हो?
3: इधर से।
1: इधर से आ रही हो, इधर से आने में देर लग गई।
3: बिल्कुल देर लगी
1: है ना, तो टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलोगी? मतलब क्या जा रही हो चोंच के साथ? अच्छा कुछ और कहना है सर दर्द? थैंक यू सो मच। और ये सरदर्द वो वाहिद बनती है जो रोज विनर बनने के लिए कॉल कर लेती है, बिचारी। 03000

0: Okay, welcome back. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, और लास्ट लिंक में वापस आ चुके हैं जी, लास्ट लकी कॉलर 03000113488 के ऊपर लास्ट इन लकी कॉलर. हेलो हेलो, वालेकुम सलाम. ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है. 03000113488 एक और ट्राई. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से?
1: जी से बात कर रहा हूँ, लारकाना से.
0: ओके, प्रोग्राम सुनते हैं
1: जी. प्रोग्राम अभी अभी ऑन किया है.
0: ओके, लास्ट कॉलर हैं आप, तो हमें आज की अच्छी बात बता दें.
1: आज की अच्छी बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम का हमारा वक्त गुजरता है वो अच्छा बहुत गुजरता है. हमारे भाई की आज शादी है. हम इंशाल्लाह आप जाएंगे शादी हाल में.
0: आपको बहुत बहुत मुबारक हो. बिल्कुल, आपको अच्छा सा गाना हम सुनाते हैं.
1: सलामत रखे.
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज जी. और साथ साथ हम मैसेजेस को भी इंक्लूड करते हैं जी. मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं जी. महबूब अली हमें सुन रहे हैं मोरो सिटी से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी सिस्टर. वेलकम सिस्टर, आपके प्रोग्राम का हम इंतजार करते हैं. और कहते हैं कि जी आपका प्रोग्राम की क्या बात है, हमारी फरमाइश भी अच्छी है. प्ले करती हो, जीती रहो. थैंक यू सो मच. और मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आपका मैसेज रीड करने की. और कहते हैं कि जी बहुत सारी दुआएं आपके साथ. इसके अलावा आकाश कुमार, विशाल कुमार, बिहारी लाल, संदीप संदीप कुमार, कृष्ण कुमार और मुमताज मलाई का गाना सुनना चाहते हैं जी. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ फाइनली मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तो हम लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजी. सुनो मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है. और इसी के साथ साथ लास्ट में हम प्ले करेंगे अच्छा सा सॉन्ग.
2: कैसे चलेंगे सिलसिले, तुमसे ही करता शुरू.
0: सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, बामान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसात तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं किरण जे नतीजे में ॿ ॼणा फोत। रोड रस्ता तलाउ जो नेक ॾियणु लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। E11 नालो भरिजण सबबि पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं। बाद फोत तलब। ग्वाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतहाल ख़तरनाक बणियल। पिंडी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलणु लॻियूं। बरसाती पाणी सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया।
1: सिंध काबीना ई आफ़ीस ऐं ई काबीना खे इदारे जी शिकिल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ई गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन फीस बि 1000 रुपया मुक़ररु। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कचे वारे ज़मीन जी सर्वे कराए नक्शा ठाहिण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन जी तयारीअ लाइ अशरफ वास्तीअ खे कंसल्टेंट मुक़ररु करण जो मंज़ूरी ॾिनी वई। PCC यूनिट जो बि नालो तब्दील करे सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,23,000 मेट्रिक टन कणक ख़रीद करण जी मंज़ूरी ते 3,00,000।
0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जूं बक्शिश में चीन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। इसहाक़ डार चीन, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान ऐं परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परॾेही आफ़ीस मौजूदु मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं।
1: मेयर भरिसां चांडिया बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणे तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल, 3 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठु हासिल खोसो में चांडिया बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग जे नतीजे में 35 वरनि जो सजाद वलद बख़्शल चांडियो क़तल थी पियो। ॿिए धुर जा इम्तियाज़ चांडियो, वाहिद बख़्श ऐं गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो लठियूं लॻण सबबि सख़्त ज़ख़्मी थी पिया।
0: दादू में अवामी फोरम जे ज़रिए पाणी जे खोट ख़िलाफ़ धरणो हारे नाबादगारनि ऐं शहरनि शाहजहान पार्क खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी धरणो हयो। अॻवाणनि चयो आहे त दरियाहनि में पाणी जी सूरतहाल बहितर हुजण बावजूदि शाखनि में पाणी जी खोट आहे। फसल सुकी रहिया आहिनि। आबादगार परेशान आहिनि। पाणी फराम कयो वञे।
1: उडेरो लाल वेझो स्कूल में उस्तादनि ऐं सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। ॻोठु हाजी जान मोहम्मद हिंगोर जे स्कूल में सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। निंदो वेझो बि उस्ताद जे बदिलीअ ख़िलाफ़ ॻोठु सिद्दीक़ ख़ासि किले जो प्राइमरी स्कूल बंदि थी वियो। ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि उस्ताद जे बदिलीअ ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त ॻोठ जे स्कूल में मुक़ररु उस्ताद बदिली थियण ऐं बाद में स्कूल 6 महीननि खां बंदि आहे, जंहिंजो नोटिस वठी उस्ताद मुक़ररु कयो वञे।
0: मोरे में उस्ताद जे घर ते हमले ऐं फायरिंग ख़िलाफ़ सियासी समाजी धुरियुनि जो एहतजाज। सिंध कॉलोनीअ में उस्ताद पीरल सियाल जे घर ते हमले ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरनि जो चवणु आहे त पुलिस अहलकारनि घर ते फायरिंग करे नौजवान अली रज़ा सियाल खे ज़ख़्मी कयो आहे। नोटिस वठी इंसाफ़ फराम कयो वञे।
1: जोई ऐं नवाब शाह में आबघात जा वाकिया। नौजवान ऐं पेशमाम ज़िंदगीअ जो अंत आंदो। जोईअ जे ॻोठु बचल खां रिंद में नौजवान अदनान रिंद पाण मथां पिस्टल जो फायर कयो। वारसनि जो चवणु आहे त नौजवान घरू मसलनि तां कावड़ जी घर जे कमरे अंदरि पाण मथां पिस्टल जो फायर कयो। नवाब शाह में मस्जिद जे मौलवीअ घर अंदरि फाओ खाई आबघात कयो। बंगवार कॉलोनीअ जे मस्जिद जे पेशमाम 61 वरनि जे अयाज़ चिना ज़िंदगीअ जो अंत आंदो। घर अंदर फाओ खाईंदड़ मौलवीअ जे आबघात जो कारण मालूम न थी सघियो।
0: ऐं घोड़ावारी लगवी गोगालीअ जे टकर बाद सुज़ूकी सिम नाले में कल्टी। केतिरा ई मुसाफ़िर ज़ख़्मी। हादसे जे नतीजे में औरतनि ऐं ॿारनि समेत केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थिया। मुसाफ़िरनि जो वीगो गाॾी जे ड्राइवर ख़िलाफ़ एहतजाज। केस दाख़िल करे खेस गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुने बंदा सभी खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। के संबंध है चाहतों की बारिश और खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत से दर्द गम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। और जी सर अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में खूबसूरत से लोगों को हम वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ सर अपना भी तारुफ करवाइए और अपने हाल चाल भी बताइए। सो डियर लिसनर्स अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। ओके जी, तो 2 घंटे हम आप लोगों के साथ करेंगे इन्नी शाली नहीं बल्कि इन्नी शाली बात है। और आप रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और मजे करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आने के फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसे बहुत सारी आंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं आगे से प्रोग्राम करते हैं जी। आज एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ कलाम कह ले नाद कह ले तो यहाँ पर स्टार्टिंग में सुनते हैं जी। उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क प्रोग्राम जल्दी का नाम।

ओके जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। अब इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती, आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे। और जी आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या तरीकेकार होने वाले हैं वो जरा आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले जो है ना वो बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम में टॉपिक की अगर बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए। हाँ जी, सारे लोग ही बताएंगे, जाहिर सी बात है, सारे लोग बताइए कि वो। हाँ जी, आज भी एक पहेली है, मैं सोच रही थी कि वैसे तो आप लोगों से पहेलियां मैं कम ही पूछती हूँ, तो आजकल आप लोगों से कुछ मैं पहेलियां जो है ना वो पूछ लेती हूँ। तो आज की जो पहेली होने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी कि आपने मुझे बताना है कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। बिल्कुल जी, आज की पहेली है जो कि आपने बताना है इसका जवाब क्या हो सकता है, आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। ठीक है, अगर इसका जवाब आप जानते हैं, अगर आप टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। बिल्कुल जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर। और जनाब अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, अगर आप सर्च करते हैं तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। अगर आप रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाते, यानी कि आप नहीं है उन उन एरिया के अंदर जहां जहां पर रेडियो की आवाज़ आती है, तो कोई मसले की बात नहीं, आप फेसबुक ऑन कीजिए, हमारा पेज खोलिए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। तो लाइव के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो आप हमारा प्रोग्राम इजीली सुन सकते हैं। अगर शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो आप मुझे पैनल पर मैसेज कर दें, सिंपली ये तरीके कार हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। और आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहां कहां से सुनते जा रहे हैं ये भी बताइए। और टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं तो वो तो भाई जरूर से कीजिएगा। और आज का जो सवाल पूछा गया है वो थोड़ा सा मजेदार है वो ऐसे कि आप मुझे बताएंगे कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है, क्या आता है बताएं तो जरा। वैसे अब आप ये सोचेंगे कि भाई आसमान और जमीन के बीच में दरमियान में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे हमने नोटिस करा है बहुत सारी चीजें, बस क्या क्या चीजें आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, आपने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। और जल्दी से मुझे 8821 पर ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और कोई अच्छी अच्छी से गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप फरमाइश कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर आप हाँ जी घुड़ने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि बहुत से लोग घुड़ने वाले लिसनर्स होते हैं, वो ऐसे क्योंकि वो हमारा प्रोग्राम तो सुन रहे होते हैं लेकिन वो शामली प्रोग्राम नहीं हो पाते हैं, तो जनाब इतनी ज्यादा जो ना वो खामोशियां अच्छी नहीं होती। वैसे भी कहते हैं कभी ना कभी खामोशियों को तोड़ लेना चाहिए, और इसी के साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और इसके अलावा मुझे बताइए, हाँ जी भाईजान आप भी हमारे साथ मौजूद है, और ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी समाज है, तो उनको वेलकम और मोहब्बतों के साथ जनाब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहा जाता है। और साथ यहाँ पर टाइम देखा तो टाइम हो जाता है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाया जाएगा, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास आएंगे तो जनाब मजीद आप लोगों में से कितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, क्या क्या कह रहे हैं, कौन कौन से गाने सुनेंगे, ये जरा वापस आकर आप लोगों को बताते हैं। आप जरा ज्वाइन करते जाइए और टॉपिक को फॉलो कीजिएगा। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग GFM 88 नेटवर्क, आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003885699।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8151।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

उनजी गानो डाढो खूबसूरत है गाने जी वाइब इतरी कमाल जी आए बुधी करे मजो छी वेंदो है अच्छा उनका अलावा ये हमारे साथ जी दादा आसमान और जमीन के बीच वाह वाह वाह वाह वाह वा, ताड़ी थी वजन ताड़ी बिल्कुल तारो जवाब दुरुस्त आहे और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सेडू आसमान और जमीन के बीच यहाँ वाली कारा अच्छी हुई इसको बीच में नहीं आना था और कहते हैं नहीं थोड़ा सा आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया है कोई बात नहीं कोई बात नहीं और मजहर अली हमारे साथ ही टॉपिक अगर रियल में देखा जाए तो जवाब होगा ओके ओके रियल में नहीं देखे आप वैसे देखे वो वाला आपका जवाब सही है और आपने गाने की फरमाइश कर दी है ठीक है जी मैं कोशिश करूंगी सबके ही गाने लगा देंगे और कश्मोर से अखलाक भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया ये क्या जवाब दिया ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई तो ठीक है जी गाना सुनते हैं जरा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं

ओके जी, मैंने आज आप लोगों से सवाल ही पूछा कि आप मुझे बताएं आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। बहुत ही आसान सा सवाल आप लोगों से पूछा गया जिसका जवाब आप मुझे बताने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए। और ये जो प्यारा गाना मैंने लगाया ये आपको डेडिकेट जाता है, जिसको भी अच्छा लगे एंजॉय कीजिए। और आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का। आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

हा भई जंहिं तकलीफ़ ॾिनी उहा ई उन तकलीफ़ जो जेको आहे न दवा बि आहे मरहम बि आहे. बिल्कुलु ईअं थींदो आहे. असां इंसाननि खे लॻंदो आहे त जेके असांजे ज़िंदगीअ में ॾुख ईंदा आहिनि तकलीफ़ूं ईंदा आहिनि उहे सिर्फ़ु असांजे लाइ आज़माइशूं हूंदियूं आहिनि. पर कई मरतबा ईअं बि थी वेंदो आहे त जेके माण्हू असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि यानी आसपास जेके बि असांजे माण्हू आहिनि उहे माण्हू बि असांजी आज़माइश जो सबबु बणजंदा आहिनि. ऐं कुझु माण्हू अगरि असांजी लाइफ में मौजूदु हूंदा आहिनि त उहो सबर जी या फिर ॾिठो वञे असांजो सबर जेको आहे न उनखे मतलबु सिंधी थोरी मुंहिंजी कची आहे मां चीज़ूं एक्सप्लेन न करे सघंदी आहियां सिंधी में. त कुझु लोग जो हमारी ज़िंदगी में होते न वो भी आज़माइश के तौर पर आते हैं हमारी ज़िंदगी में क्योंकि देखा जाता है कि हम उन लोगों को किस तरह फेस करते हैं और कितना हम सब्र करते हैं जब वो लोग हमारी ज़िंदगी में मुश्किलों का बायस बनते हैं. और वैसे ये चीज़ तो हमारे ज़हन में होती है कि भाई अल्लाह की तरफ से हमें जो आज़माइशें में होती है वो दुख या तकलीफ की सूरत में मिलती है. लेकिन ऐसा नहीं होता. कभी कभार इंसान भी हमारी ज़िंदगी में अगर आते हैं तो वो भी हमारी आज़माइश के तौर पर ही देखे जाते हैं. तो कोशिश करें कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में आजमाइश के तौर पर आए हैं आपको लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आजमाइश हो सकती है तो सब्र से पेश आए. सब्र करें क्योंकि सब्र से ज़्यादा बड़ा हथियार इंसान के पास और कोई नहीं होता. तो सब्र से काम लें ज़रा.

यस आज डीजे ऑन मोड. अच्छा बिल्कुल आपके मैसेजेस पढ़ेंगे जी पढ़ेंगे. आपको कैसे भूलेंगे क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनकें आ जाती हैं. तो टॉपिक को फॉलो करते रहे हैं और यहाँ पर एक मिनट. अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है. हाय सुंदरा. अच्छा बस आर को हटाकर आए दीजिए ताकि सुंदरी बन जाए. कहते हैं हाउ आर यू. मैं ठीक हूँ. शो आपका वेरी नाइस है. दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची. अल्ताफ अली गादी बलोच आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है. वैसे क्या ही सिदरा को आपने सुंदरा बना दिया. सो बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मोहब्बतें हैं जी आपकी. और उनका अलावा हीवारो गानों पे साइन लिस्ट में आए गानों बुदना सी आई जेकी मानो सजा फेसबुक पे मौजूद आए पोस्ट के लाइक शेयर कयो. शाबाश.

जी बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ बातें वाकई ऐसी होती है जिनको भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अच्छा टॉपिक है जवाब, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फिजा भी दे दिया है, तो फिजा से मुझे एक बात याद आ गई। मेरी दोस्त है, मतलब कॉलेज फ्रेंड है फिजा, तो वो कल परसों ही शायद मुझे बता रही थी कि उसकी जो सास है ना, तो वह असांजो प्रोग्राम मतलब ॿुधंदी आहे, उन जी जेका सस आहे। सो मूंखे चए पई उहा टीचर आहे बेसिकली, त घर वेंदी आहे, चए पई जॾहिं बि मां घर वेंदी आहियां त मुंहिंजी अमी जेको आहे न तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदी आहे। ऐं हिकु दफ़ो मां चयोमांसि, अमी इहो मुंहिंजी दोस्त अथई, त चए पई न, या वरी तुंहिंजी दोस्त काॾां हूंदी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कसम से। वो कहती भाई मेरी सास भी तुम्हारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनती है। तो फिजा जी सस असांगे बुधे में और कह रही थी उनको मतलब शो में ऐड करना, मैं भूल गई थी कल परसों। आज मुझे अभी फिजा देखा तो याद आ गया कि हाँ फिजा ने कल परसों ये बोला था। तो बिल्कुल जी फिजा जी सस असांगे बुधे पे बड़े शौक से असांजो प्रोग्राम बुधंदी आहे। हाँ अमी बिल्कुल मां फिजा जी दोस्त है। मतलब इलाही टाइम खां वठी।

आज नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, याद कर लिया. गाना एंजॉय करें और गाने के साथ साथ हम जरा जाएंगे जी न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे पूरे तीन बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. चलती का नाम मस्ती और चलती रहेगी पूरे पूरे तीन बजे तक.

इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुर्जे। मका दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ न आहे। इस्लामाबाद मफ़ामत यादाश ते खिते में अमुन जे बहाली लाइ आम आहे। शिंगाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जी सरबराही इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। दहशतगर्दनि खे अफ़गान सरज़मीन इस्तेमालु करण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ परज़म आहे। ॾखिण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ीअ वारो हदफ़ हासिलु नथो करे सघे। पाकिस्तान आलमी कानून मूजिबि तकरारनि जो हलु चाहे थो।

0: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसात तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं करण जे नतीजे में वॼणा फौत रोड रस्ता तलाउ जो लेख ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। इलेवन नालो भरिजण सबबि पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं बाद फ़ौज तलब। गवाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतहाल ख़तरनाक बणियल। पिंडीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलणु लॻियूं। बरसाती पाणी सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया।
1: सिंध काबीना ई आफ़ीस ऐं ई काबीना खे इदारे जी शिकिल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ई गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन फीस बि 1000 रुपया मुक़रर। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कचे वारे ज़मीन जी सर्वे कराए नक्शा ठाहिण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सूबाई मालियाती वार्ड कमीशन जी बि तयारीअ लाइ अछरवासीअ खे कंसल्ट मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। पीपी यूनिट जो बि नालो तब्दील करे सिंध पब्लिक पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,23,000 मैट्रिक टन ख़रीद करण जी मंज़ूरी। 3,00,000 टन कणक पास्को ज़रिए दरामद बि कई वेंदी।
0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो शगाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे इजलास दौरान मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहन सां मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म चीन, रूस, तुर्किया, ईरान, बेलारूस, अज़बेक ऐं ताजिक सदर सां मुलाक़ातूं कयूं। मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत किथे जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो बैठक में चीन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं, ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। इसहाक़ डार चीन, ईरान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परॾेही आफ़ीस मौजूदु मुलाक़ात दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं।
0: अमेरिका इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत ते अमल करे त ईरान बि कंदो। अमेरिका वाइदनि जी भञकड़ी कई, जंहिं ते ईरान जवाब ॾिनो। शिगनाई सहकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे ईरानी सदर मसूद पश्चान चयो आहे त पाक, सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो मुस्लिम मुल्कनि में इतिहाद ॾांहुं क़दम आहे। मुल्क मुतहद थियनि त इसराइल हमिलो करे न सघंदो। अमेरिका बि इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत ॾांहुं वापसि आयो त ईरान खे तकिड़ो मुस्बत जवाब
2: ॾींदो। GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रिया और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03-000-310-509-0300-310-5109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03-00-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-00-32-04-372 आई 02-42-46-01-00।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03-01-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं जल्दी गनाम मसी प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं. प्रोग्राम में आप लोगों के मैसेजेस होंगे, आप लोगों के गाने होंगे, आप लोगों के प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं जो प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं. और इसी के साथ साथ बिल्कुल आपके मैसेजेस काफी सारे जमा हो चुके हैं, शामली प्रोग्राम रखे जाएंगे. लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी अभी सुना स्टार्ट किया है उनको वेलकम करते हैं. बाकी जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर मौजूद है उनको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में. तो जनाब वेलकम, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर. बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं वो सारा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है. अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, खास करके उन लोगों के ऊपर ना जिनको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया उन्होंने कि हाँ जी भाई जान क्या हो सकता है आसमान और जमीन के दरमियान. तो बिल्कुल आप बताइए मजीद जो लोग बताना चाहते हैं. अगर आप भी टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं तो जी मोस्ट वेलकम, फॉलो कीजिए और मुझे बताइए आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है. फिजा तो बिल्कुल भी नहीं आती. फिजा को बीच में मत लाइए. और फिजा आजकल वैसे बड़ी मोटी हो गई है, दरमियान आ भी नहीं सकती. ओके जी, तो जल्दी से जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती जाइए. और उसके अलावा जो है तो मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों के पसंद के जो गाने हैं ना वो भी साथ साथ हम जरा सुनते जाएंगे. अच्छा, गाने तो खैर लगाएंगे लेकिन आप लोगों के मैं क्या सोच रही हूँ कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं.

भी जी हमारे साथ ही मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई को खुश आमदीद कहा जाता है। और चाचा खालिद लिखते हैं कि बेटा सिडो मेरे नसीब की खुशियां भी तुझको मिल जाए, मेरी दुआ है गम ना तेरे पास आए। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच चाचा इतनी मोहब्बतों के लिए। और हमारे साथ मकसूद मल्ला मीरापुर से कहते हैं हेलो सिदरा मुस्कान, आदाब आदाब सिदरा मुस्कान, मुझे शाद बबर का गाना सुनाना, सलाम न्यू था पान जड़न के सही सही। और जवाब जी को तुम्हारे नुआ चौथा ही वठे जवाब कोई कोन दींदे एड़ो जवाब, हकीकत है बिल्कुल बिल्कुल मां समझी में नगाल के तो तमाम जड़ो जवाब कोई नहीं न तो सके। सो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और मकसूद मल्ला दोबारा मैसेज करते हैं मानू ये छो चवंदा आहिन तो हुजई नानो तो घुम लाड़कानो, इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक तो खैर मुझे भी नहीं पता, मैं तब शायद पैदा भी नहीं हुई थी जब लोगों ने ये कहना है स्टार्ट किया था। और बाकी हाँ खबर तो मानू चाह चवंदा आहिन हुजई नानो तो छड लाड़कानो क्योंकि लाड़काना में बहुत चिंचियां हो गई और चिंचियां की वजह से जो है ना वो लाड़काना छड़ने को दिल करता है। तो बाबा ये जो चिंचू आए ना इनू बेजार कयो आए ना चिंचन बस छाई चवा हाणे मां मुखे अलाई शो मतलब चिंची रोड ते हलंदी आ ते लगंदो ही चलता फिरता मतलब जो को ना खतरो आ है छो तो मूं कॾहिं बि कंहिं बि चिंचीअ में ब्रेक बि नाहे ॾिठो ऐं साइड मिरर्स बि नाहे ॾिठा, बसि हू अंधाधुन हलाईंदा आहिनि चिंची ऐं हुनजी नज़र हेॾे होॾे हूंदी आहे रोड ते त भई ग्राहक बीठो हूंदो हेॾां होॾां बसि ॾिसंदा आहिनि, हुननि खे बिल्कुलु ख़बर नाहे पवंदी त बाबा को क्रॉस करे थो या का गाॾी अचे थी, बसि हुननि खे इहो हूंदो आहे सिर्फ़ु हेॾे होॾे ॾिसंदा आहिनि, नो ब्रेक नो साइड मिरर, अलाए छा आहे बाबा चिंचन वारनि खे। अगरि चिंचन वारा मूंखे ॿुधंदा बाबा थोरो ॾिसो अलाह खे मञो ॿियनि जे सिहत जो ॿियनि जे ज़िंदगी जो ख़्यालु कयो। ऐं हिकु त तव्हां पंहिंजे चिंचीअ में ब्रेक लगायो, ॿियो साइड मिरर्स लगायो, जॾहिं ख़बर पए त हेॾां होॾां कोई अचे त कोन थो। छो त इलाही दफ़ा असां सां ईअं थियो आहे, असां ईअं निकिरंदा आहियूं त चिंची बाबा डस करे अचे लॻंदी आहे। सो इट्स वेरी डेंजरस बाबा, चिंची मतिलबु चलता फिरता ख़तरा। सो लाड़काणे में चिंचिन जो एॾो तादादु वधी वियो आहे, मूंखे मतिलबु चवण में बि थोरो अजीब फील थिए थो, न कयो बाबा ॾिसो अलाह खे मञो।

भाग्य सां चवण न चवण सां कुझु बि न थींदो, बाक़ी इहो आहे त वाक़ई इंसान पाण ख़्यालु करे, पाण ख़्यालु कयो ऐं थोरो ॿियनि जो बि ख़्यालु कयो, सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे. सो इहे बहुत ज़्यादा भाषण हो गया, मुझे लॻंदो आहे कभी कभी मैं कुझु ऐसी बातें बोल देती हूँ प्रोग्राम में, मेरे ऊपर सूट नहीं करती, लेकिन हाँ ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इरिटेट कर रही हैं आजकल मुझे. और ये हमने गाना लगाया जो कि शायद बब्बर की आवाज़ में गाना है, और इस गाने की फरमाइश मुझे पता नहीं किसने कर दी थी, दो शायद लोग थे जो शायद बब्बर का गाना सुनना चाहते थे, ये गाना उन दोनों को डेडिकेट जाएगा.

हाय ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां ॿुधो पिया अच्छा मक़सूद केॾे वॾो खूनी गानो हलायो अथई शमन मिराली जो बिल्कुलु बिल्कुलु ही बि खूनी गानो तव्हां ॿुधो अच्छा फ़हीम केॾे दादा रिक्शा वाले बि कम नही है कुझु टाइम पहिले में फुल स्पीड आ रहा था अचानक रिक्शे वाला आ गया मेरी बाइक स्लिप हो गई और अगरि ब्रेक नही लॻाता तो यही बात है ना बिल्कुलु बिल्कुलु वैसे मूंखे त अॼुकल्ह लाड़काणे में जेको न रिक्शा सफ़ा घटि नज़र अचंदा चिंग चिंग दादा बाबा हेॾो हेॾो थी वियो आहे चिंग चू तो वांदो जॾहिं ईअं मतिलबु ट्रैफिक टाइम थींदो आहे न पोइ उलझन थींदी आहे उलझन सम्झो

जी बाबा सखर में या कराची में या मुबधवा खैरापुर में भी चिंग चुनते बेन थे लाए सो इत लाड़काने में भी करण घुर्ज माँ यो रिक्वेस्ट कर एप्लीकेशन दूँ था बिल्कुल करो बाबा करो इन खत्म करो लाड़काने में न तो बाकी असा नानो थो तो असा छड़े वेंदी लाड़काने

तो मैं गानो ॿुधो ऐं गाने खां फौरन बाद जेको आहे असां वञूं था शॉर्ट कमर जे तरफ़ उनखां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटी नासी जंहिंजा माण्हुनि जा मैसेज आहिनि बाबा अॼु लॻे थो तव्हां मैसेज लाइ रहिजी विया आहिनि सभु पढ़ूं था बाबा सभु पढ़ूं त तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजी स्पीड जी सो मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटा थी तव्हां सभु हिते वेठा हुजो कारी नवनि जो ॿुधंदा रहो प्रोग्राम जल्दी कंदा मस्ती तव्हांजो सॼो साथ पूरे टे बजे ताईं

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003855569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

रवि जी वापस आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। चलती का नाम मस्ती आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामली प्रोग्राम होते जा रहे हैं और तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद करते हैं। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत हो समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। बहुत ही आसान सा सवाल आप लोगों से पूछा गया आज के प्रोग्राम में, तो मुझे जवाब आप बताते जा रहे हैं। लेकिन मैसेजेस काफी सारे हैं, तो मैं जरा सोच रही थी कि आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ते आएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ हैं, हाय सिद्धरा जी, हेलो टू यू। अच्छा, अल्ताफ अली गादी बलोच, आप हमें कराची से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपने टॉपिक के ऊपर इतने सारे मैसेजेस कर दिए बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा बस सब्र करिए, आपको बताएंगे जवाब क्या है। और मोहम्मद जमान हमारे साथ है, वेलकम स्वीट बुआ जी, श्योर गुड है हमेशा की तरह टॉपिक, आई थिंक ओके सिर्फ मखलू कोई तक नहीं चीजों आए और कहते मेरा एसएमएस रीड नहीं हुआ, नाराज आई छा न बाबा छो नाराज छो ता छा कयो ता करो चिंची लाइ। अच्छा, और हमारे साथ गोठ मोमन तैयब थे, वो कहा भी बोला थे, वो तमाम जो शो वेरी नाइस आए, थैंक यू वेरी मच। और महलाबाद से गुलाम शबीर अबड़ो हैं और कहते हैं जमीन और आसमां के बीच पता नहीं क्या लिखा है आपने, मुझे समझ नहीं आई बात, सो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ ही, आपको वेलकम कहा जाता है। और बिल्कुल जी चाचा, मैंने देख ली आप सब लोगों के मैसेजेस पर मेरी नजर होती है, कोई भी मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। और कश्मीर से हमारे साथी जुबेदा बलोच, हमारी भाभी, हाय सिद्धरा, नाइस यो आंसर आपने दिया है, बिल्कुल दुरुस्त, क्या बात है भाभी जान। और ये हमारे साथ हैं जी, गुड आफ्टरनून सुंदरी जी, आंसर है जमीन और आसमां के दरमियान फासला है, इतना थोड़ा फासला कैसे हो सकता है बताए मुझे जरा। अल्ताफ अली गादी जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं जी, अच्छा ये इतने सारे मैसेजेस आप अल्ताफ अली गादी आपने कर दिए हैं, बहुत शुक्रिया जी, टॉपिक के ऊपर आपने इतने सारे मैसेजेस भेज दिए हैं। और हमारे साथ मायरा हमारा शो सुन रही है, मायरा कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपने भी मायरा टॉपिक का जवाब दिया है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, क्या बात है जी। और जाग जानी चाचू हमारे साथ है, कहते प्लीज प्ले मास्टर मंजूर हली रहे आहे तव्हां एंजॉय कयो। और हमारे साथ है कश्मीर से अखलाक भाई, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैं बस हो गई मेरी बस हो गई। अच्छा, उनके अलावा मोहम्मद जमान भाई कहते हैं बुआ अच्छा इतना लंबा लेक्चर इसलिए था क्योंकि आपको स्कूटी चलानी थी। हाँ मैं सीख तो रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरे अंदर एक फूबिया बैठ गया है, डर, वो जब खत्म होगा तो फिर कुछ सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे। और बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ जी एक तो पैसे खर्च हो रहे हैं, दूसरा आप हमारे SMS रीड नहीं कर रही हैं, हम मासूम के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस आज ऐसा है कि आपके मैसेजेस पढ़ने में थोड़ी सी मुझे लेट हो गई है, सो डोंट बी सैड। और यहाँ पर हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम रोशनियों का सिटी कराची को, और हम हाँ कहती और हम चिंचियों का सिटी लाड़काना को कहते हैं, बेशक कुछ टाइम पहले इस पे स्टोरी रखी थी, बड़ा हंसी थी, और हमारे यहाँ तो एक चिंची है वो भी क्या बात है क्या बात है, ये सही है, हिकड़िया तो ना के बर्दाश्त कयो वेंदो, इतनी सारी बर्दाश्त नहीं होती। ये इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया, पसंद आई बात मुझे। और कहती ओए प्यारी ये क्या तुम, हाँ वैसे सही कह रही हो, सोचेंगे सोचेंगे।

हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिद्रा सिस्टर कैसी हो डियर स्वीटी मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो हमारी प्यारी फजली और फहीम बिल्कुल आपका ये जो मैसेज ना कुछ टाइम पहले वाला मैसेज ठीक है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आप जो है ना वो थोड़ा सा टेंशन ना लें क्योंकि उनका इलाज अभी होगा थोड़ा आप सब्र करें मतलब जेको ना प्रोसेस में आए इन चीजों और हमारे साथ हैं अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची मुझे अभी सॉन्ग सुनाओ ओ पिरी जरूर प्ले करना ओके इतना टाइम के बाद आपको गाना याद आया जब इतने सारे मैसेजेस करे स्टार्ट में तब नहीं बोला तो शायद लगा भी देते अभी तो जिन लोगों ने पहले फरमाइश करी थी ना तो उनके गाने से ऐड कर दिए थे मैंने लिस्ट में और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ वैसे आप 5 बजे वाले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कीजिएगा आपको लाजमी गाना सुनाओ

나 가입해 나요. 아이린. अच्छा साइमा कहती हैं शो मस्त है, टॉपिक तबीयत नासाज है इसीलिए नहीं आ रही थी। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और क्या हुआ है वैसे बताएं। और चाचा खालिद कहते हैं हाँ बिल्कुल वो पता है, और बाकी इनकम का मुझे नहीं पता, मैं नन्ना मुन्नरा ही देश का सिपाही यू नो ना। मकसूद मल्हा कहते हैं मास्टर मजो जो गानों हलायो बबा तां बुधो हूंदो हाणे। ओके हमारे साथ ही ये अस्सलाम वालेकुम अदा छाला तांजो ठीक आया इलाही बख्श बुगियो हमारे साथ कहते हैं बाजी माशाल्लाह तवांजा प्रोग्राम भला हुंदा आहिन पसंद आहिन असांखे सदा सलामत रहो। थैंक यू सो मच प्यारा सोना भा तांजो मोहब्बतूं आहिन।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना जो कि हम इंजॉय कर रहे थे, और फरमाइश थी इस गाने की भी खैर। और यहाँ पर आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, जरा उसका जवाब बताएं, वरना अल्ताफ अली गादी जी और ज्यादा मैसेज भेजेंगे। 20-30 तो मैसेज खाली आपने हमें भेजी अल्ताफ अली गादी जी। और अच्छा, तो टॉपिक का जवाब जो है वो होने वाला है। अच्छा, मैंने सवाल पूछा है कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है, तो आसमान और जमीन के दरमियान जो है ना वो और आता है। और जब आप आसमान लिखें और लिखें और जमीन लिखें तो और आएगा ना। इतना आसान सा सवाल था, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने, भाई बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया, और बाकी थोड़े थोड़े लोग थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा गलत जवाब दिया। और ये फहीम कहते हैं दादा, मतलब हाँ ऐसा, ये बचत के बारे में तो मैं खैर से थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ। बाकी ये है कि स्कूटी का शौक जो ना मुझे 2018 से लेकर है, 2018 से लेकर मतलब मैं क्रेजी हूँ। तो वो है कि फिर ये था कि बस नहीं ले सकी थी, यही रीजन था कि भाई यहाँ पर कोई चलाता नहीं है, इतना माहौल नहीं है, ये नई चीज है, वो नई चीज है, तो उस वजह से मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है रहने देते। लेकिन अभी तो ट्रेंड आ चुका है बहुत ज्यादा, तो फिर मैं सोच रही थी कि ओके ओके जी रिपोर्ट। भाई मेरा थोड़ा सीन अलग है, मैं मतलब मेरी जो आदत है ना वो थोड़ी थोड़ी ऐसी है, बाइक चलाऊं और बस ऐसी लड़कों वाली। तो ये है, और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रेक है, और इस गाने के साथ आप लोगों से लेते ही जी इजाजत। ओके, साइमा अपना ख्याल रखें, ठीक है, बहुत ज्यादा वाला अपना ख्याल रखिए। और जी मिलते हैं आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में, सो अपना सारे लोग ढेर सारा ख्याल रखिए इनशाला। वरी तहां से मुलाकात मुझी 5 बजे वाले प्रोग्राम में थी भाई। सो मुकलानी नाही बाबू सिंह सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आर शेयर्ड वाटर्स आर सॉलम बाइंडिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, दे आर नॉट मैटर्स ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंसेस टू बी कास्ट असाइड एट योर विल, दे मस्ट बी ऑनर्ड अनकंडीशनली इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट।
2: पाणी हिते जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे। पाणी खे हथियार तौरु इस्तेमालु करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौरु इस्तेमालु कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। शिमला सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरप्राइज़ इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिबि अमल थियणु घुर्जे। मके दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिंजे ख़िलाफ़ न आहे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त बि खिते में अमुन जी बहाली लाइ अहम आहे। दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमुन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे। ॾखण एशिया मुकमिल अमुन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघिजे।

0: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसाति तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं किरण जे नतीजे में मिजणा फौत थी विया। रोड रस्ता तलाउ जो लेख ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। E11 नालो भरजण सबबि पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं वाद वाद फ़ौज तलब। गवाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतहाल ख़तरनाक बणियल। पिंडीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलण लॻियूं। बरसाती पाणी सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया। सिंध काबीना ई आफ़िस ऐं ई काबीना खे इदारनि जी शकल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ई गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन फीस बि 1000 रुपया मुक़ररु। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कचे वारे ज़मीन जी सर्वे कराए नक्शा ठाहिण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ते खे कंसल्टेंट मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। PP यूनिट जो नालो बि तब्दील करे सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,23,000 मेट्रिक टन कणक ख़रीद करण जी मंज़ूरी। 3,00,000 टन कणक पास्को ज़रिए दरामद बि कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो शंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे इजलास दौरान मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म चीन, रूस, तुर्किया, ईरान, बिलारूस, अज़बेक ऐं ताजिकिस सदर सां मुलाक़ातूं कयूं। मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। नायब वज़ीर आज़म सकदार जो बक्शेक में चीन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। सकदार चीन, ईरान, अज़बकिस्तान ऐं बेलारूस जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परॾेही आफ़िस मूजिबि मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। अमेरिका इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ते अमल करे त ईरान बि कंदो। अमेरिका वाइदनि जी भञकड़ी कई, जंहिं ते ईरान जवाब ॾिनो। शंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त पाक तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो मुस्लिम मुल्कनि में इतिहाद ॾांहुं क़दम आहे। मुस्लिम मुल्क मुतहद थियनि त इसराइल हमिलो करे न सघंदो। अमेरिका बि इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ॾांहुं वापसि आयो त ईरान बि तकिड़ो ऐं मुस्बत जवाबु ॾींदो। अॻूणे निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सुमरो इख़्तियार ज़िले ऐं तालुके सतह ताईं मुंतकिल करण जी हिमायत करे छॾी। मोहम्मद मियां सुमरो चयो आहे त इख़्तियारनि जे हेठें सतह ताईं मुंतकिली सां बहितर हुकुमरानी क़ाइमु थींदी ऐं अवामी मसला हल थींदा। वसीलनि जे शफ़ाफ़ ऐं मुनसिफ़ाणी विर्छ लाइ सूबाई ज़िले ऐं तालुके सतह ते फ्रांस अवार्ड्स खे लाज़मी करार ॾियण जी बि ज़रूरत आहे। स्कूलनि, इस्पतालनि, रोडनि, पाणी ऐं नेकाल जे मनसूबनि जे फंडनि जी बि आज़ादु निगरानी, मुसलसिल ऑडिट ऐं सख़्त एहतसाब ज़रूरी आहे। ठठे वेझो पीरसन जो लाश हथ, वारसनि पारां क़तल जो शख़्स ज़ाहिर। जुमशाही पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। जुमशाही फाटक वटां 55 वरनि जे जुमन जखरो जो लाश संदसि मोटरसाइकिल भरिसां मिलियो। वारसनि पारां क़तल जो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो। जुमशाही पुलिस जे रवैये ख़िलाफ़ एहतजाज। इंसाफ़ जी घुर कई वई। दादू में अवामी फोरम जो ज़रिए पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ धरणो। हारियुनि आबादगारनि ऐं शहरियुनि शाहजहान पार्क खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी धरणो हयो। अॻवाननि चयो आहे त दरियाहनि में पाणीअ जी सूरतहाल बहितर हुजण बावजूद शाखनि में पाणीअ जी खोट आहे। फसल सुकी रहिया आहिनि, आबादगार परेशान आहिनि। पाणी फराहम कयो वञे। घोटकी में अॻोणे SHO क़ाबिल भयो मथां। पीका एक्ट तहत वधीक हिकु केस दाख़िल। ॻोठाणे मलहन शहर खे लाकअप अंदरि तशदुद ऐं तज़लील जो निशानो बणाइण ते केस दाख़िल कयो वियो। SSP तर्फ़ां नौकिरी तां बरतरफ़ करण बाद आंदल सुंदराणी थाणे जो अॻोणो SHO गुम थी वियो आहे। जोही ऐं नवाबशाह में आबघात जा वाकिया। नौजवान ऐं पेश इमाम ज़िंदगी जो अंतांदो। जोही जे घोट बचल खां रिंद में नौजवान अदनान रिंद पाण मथां पिस्टल जा फायर कया। वारसनि जो चवणु आहे त नौजवान घरू मसलनि तां कावड़ जी घर जे कमरे अंदरि पाण मथां पिस्टल जो फायर कयो। नवाब शाह में मस्जिद जे मौलवी घर अंदरि फाउ खाई आबघात कयो। मुगमार कॉलोनी जे मस्जिद जे पेश इमाम 61 वरनि जे अयाज सना ज़िंदगी जो अंतांदो आहे। घर अंदरि फाउ खाईंदड़ मौलवी जे आबघात जो कारण मालूम न थी सघियो। ऐं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जे सिलेक्शन कमेटी जे मेंबर मिसबाह उल हक इंग्लैंड में टीम जी ख़राब कारकर्दगी बाद उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। PCB जे रांदीगरनि जी चूंड में मशवरो न करण ते इल्ज़ाम। मिसबाह उल हक चयो आहे त टीम जी ख़राब कारकर्दगी मायूस कयो आहे। टीम जी चूंड में बि मशवरो न कयो वियो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: असली चीजां चारों मसालों की सुनियाण पर ट्रेडमार्क नंबर चोटीह 2000 ॾिसी करे ख़रीद कंदा। जी जान चारो मसालो, ढोर जो हाज़मो दुरुस्त, जी जान चारो मसालो, ढोर सेहतमंद, जी जान चारो मसालो। जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-15-5-724।
7: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8196-851
1: छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजी दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधाए
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मिरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मैं तो इस पर बात कर, जब एक एमपीए की नहीं सुन रहे, आप बोलते हैं हम सब एक हैं। फिर मेरे अल्लाह ने मुझे बताया, दीन ने सिखाया कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई फजीलत हासिल नहीं। तो यार आपको कैसे फजीलत हासिल हो गई, मुझ पर या हम पर या आपको आवाम पर? आप कैसे ऊपर हो गए और हम नीचे हो गए? इन चीजों से अब निकलें, बेहतरी की बात करें। मेरी तो जहां जरूरत पड़ेगी मैं फ्री काम करूंगा, बगैर किसी लाइमलाइट के काम करूंगा आपके लिए, लेकिन अगर अच्छाई होगी सूबे में। सवाल यहां छोड़कर जाऊंगा कि अगर सिंध के लोगों का कुछ बेहतर होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की शक्ल में हो या कोई और मॉडल हो, अगर उनकी जिंदगी बेहतर होती है तो कर देना चाहिए इस असेंबली को। ये एक एक हिस्ट्री में काउंट होगा कि सब ने अपनी सीटों की ताकत को छोड़कर अवाम की ताकत के लिए काम करा। कुर्सी से मोहब्बत इतनी ना करें कि किरदार में हम लोग गिर जाएं।

0: جميل يا منسوب رساب.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-310-5109, 03000-310-5109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03-201-800-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
1: हां साईं गाल भी एड़ी आहे।
0: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
1: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो। ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
0: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अच।
0: मां हाणे ही तो वन्या त जी असी भी खीर वधायो ऐं नोट कमायो।
1: हा साई हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03333105109 03003105109।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रभी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

ठीक ठाक आयो अवां चाक चंगा भला आयो अवां मतारा जोड़ आयो अवां हशाश बशाश आयो असांजी दुआ है त सदाई तारनि में चंडु हुजो खीर में खंडु हुजो मेवनि में अंबु हुजो ऐं कॾहिं पवांजी मुर्क मेरी न थिए सदाई अवां जे लुड़कनि जो डुकार ऐं मुर्कनि जो सुकार हुजे शाल अवां खे कोसो वार न लॻे शाल अवां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो जुग जुग जीओ मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो समयन ही आहे जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जो जीए एफएम

मातली, जीएफएम मीरपुर खास, जीएफएम मटियारी, जीएफएम सकरंड, जीएफएम मोरो, जीएफएम मेहरापुर, जीएफएम सखर ऐं जीएफएम लाड़काणे जो गॾियल आवाज़। जीएफएम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम टावर्स जे एंटीनाउनि जे आधार ऐं उन सां गॾोगॾु इंटरनेट जे आधार जिन जिन सुरीलनि समातुनि ताईं ही आवाज़ जी उॾार पहुचे पई, उन्हनि सभिनी जे लाइ हाज़ुर आहे शो सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम कंदे यकीनन अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आऊं अवां जो पंहिंजो यूनिस बकारी। ख़बरचार ॿुधायो, अव्हां जो वक़्तु कीअं थो गुज़रे, अव्हां जो कहिड़ो हाल अहिवाल, अव्हां वटि मौसम कीअं ऐं कहिड़ी ख़बरचार। मूंखे पूरी पक आहे त तव्हांजो वक़्तु सुठो गुज़रंदो हूंदो ऐं अव्हां जे सुठे वक़्तु गुज़रण जे लाइ असां हमेशह दुआगू हूंदासीं त अव्हां जो हर पल ख़ुशियुनि मां गुज़रे, ख़ुशियुनि वारो गुज़रे, ख़ुशियुनि में हुजो ऐं बाग बहारनि में हुजो ऐं अव्हां जी बुरक मेरी न थिए, बसि जिते बि हुजो हशाश वेठा। जनाब, असांजे तमाम स्टूडियोस जे स्टूडियो इंजीनियर्स ऐं टेक्निकल अमले जे सहकार जे करे, उते जे मैनेजमेंट जे करे असांजो आवाज़ सॼी सिंध में गूंजी रहियो आहे ऐं सॼी सिंध जे बहारुनि वारे आवाज़ में, जॾहिं बहारूं हूंदियूं, साज़ हूंदा, आवाज़ हूंदा, प्यार हूंदो, पंहिंजाइप हूंदी, त पोइ हूंदी अव्हां जी का। सिंधड़ीअ सुहिणे शायर नियाज़ पिताफ़ी चयो त किन जे मुंह में मिसरी, किन जो वात गुलाब, से माण्हू लाजवाब, लुत्फ़ जिन जे लफ़्ज़नि। सो जनाब, अव्हां जे मोहबतुनि, अव्हां जे प्यार ऐं पंहिंजाइप जे रंगनि खे शुरू करण खां पहिरियों, जेको पहिरियों रंग असां शुरू कयूं पिया, उन पहिरीं रंग खे शुरू करण ताईं कुझु मैसेजेस अची चुका आहिनि। जी हा, असांखे कुर्बान अली खासकेली साहब ज्वाइन कयो आहे झंडे मरी खां, ऐं अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं, मोहबतूं। ऐं दानिश बकारी सफ़र दौरान असांखे ज्वाइन कयो आहे, अव्हां जूं मोहबतूं, महिरबानियूं। ऐं खोड़ सारियूं अव्हां जूं मोहबतूं। अॼु असां अव्हां जूं कॉल्स वठंदासीं, मैसेज ऐं तरीक़ेकार इहो ई हूंदो, तव्हां टाइप करे MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो, 88 ते मैसेज मोकिलियो, तकिड़ो अलाए छा चयो, तव्हां इहो सोचींदा हूंदो। हा, टाइप करियो MTI, हुन खां पोइ स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो ऐं 8881, यानी 3 times 8 ऐं 1 ते सेंड करे छॾियो। हाणे हाणे मैसेज अञा बि तव्हांजा पहुचंदा, मैसेजनि जी बरसाति जेसी ताईं तव्हां ताईं पहुचे, तेसि ताईं आवाज़ ई दुनिया जा गुलाब ऐं उन्हनि जी ख़ुशबू अवां ताईं पहुचायूं था। जेतोणीक जेको आवाज़ तव्हां लाइ प्ले करे रहिया आहियूं, इहो आवाज़ को नओं ट्रैक रिकॉर्ड करण लाइ कंहिं नए स्टूडियोज़ में न ईंदो, छो त उहो आवाज़ असांखां विछड़ी चुको आहे। पर जेसि ताईं सिंध जा सुर सलामत रहंदा, इहो आवाज़ सिंध में गूंजंदो रहंदो। उहो आहे अलाह ॾिने ख़ासि खेली जो आवाज़, अचो त कच्छी ॿुधूं।

चेतारे चवंदियोस गालियों के सजणे, चेतारे चवंदियोस गालियों के सजणे, जे मोह मुकाबिल थ्यास ता वयूं सब विसरी। भला रे भेट धणीअ जे हिन खूबसूरत शहर सां अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार, छो त अवां ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम जेका आहे अवां जे नाम ऐं अवां जो आरजी अवां जो पंहिंजो यूनुस बकारी अवां सां मुख़ातिब आहे। अवां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे, GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे एप सां गॾोगॾु जेके पूरी दुनिया में असांखे ज्वाइन कनि था, उहे एप ते असांखे ज्वाइन करे सघंदा। यानी अवां सर्च कंदव गूगल ते GFM 88 रेडियो नेटवर्क, असांजी सभई स्टेशन तव्हां साम्हूं हूंदियूं, तव्हां पूरी दुनिया जे कहिड़े बि कुंड में ॿुधी सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हां असांखे पाकिस्तान जे अंदरि ॿुधो था तॾहिं बि एप ते ॿुधी सघो था। असांजी ऑफिशियल जेका आहे उहा एप आहे, हुन ते ॿुधी सघंदव। ऐं गॾोगॾु जेके रेडियो सेट ते असांखे महिरबानी ज्वाइन करे चुका आहिनि, उन जे लाइ सिंध जे 8 वॾनि शहरनि जूं रेडियो स्टेशन तव्हां साण लाइव आहिनि। उन्हनि 8 स्टेशननि ते यकीन हिकु वक़्तु सिंधड़ी जी शाम शो हले पियो। ऐं मूंखे चवंदा आहिनि आरजे यूनुस बकारी, अव्हां खे छा चवंदा आहिनि उन जे लाइ तव्हां हिकिड़ो मैसेज कंदव, टाइप कंदव MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखण खां पोइ पंहिंजो नालो ऐं 88 81 888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। अव्हां खे नंबर बि ॿुधाए छॾींदासीं, तव्हांजूं कॉल्स बि वठंदासीं। सो उहो नंबर तव्हांखे मां कुझु मैसेज रीच करे वठां, पोइ कॉल नंबर ॿुधाए छॾींदुसि, जंहिं ते तव्हां सां हाल अहिवाल बि थींदा, दिलियूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं। सो जनाब असांखे मैसेज ॻोठ हाजी सहते खां पहुतो आहे। जी जनाब असांखे यादि कयो आहे हाजी सहते साहब, महिरबानी, मिठो माण्हू भलीकार, शहबाज़ खासकेली मिठो माण्हू ॿुधे पियो, साले सोलंगी, ताज मोहम्मद सहतो, आसिफ सहतो ऐं असद सहतो ॿुधनि पिया। अव्हां जा वॾा वॾा अव्हां जूं मोहबतूं, अव्हां जूं भलायूं ऐं भाल साला साल यादि रहंदियूं, जो अव्हां असांखे यादि कयो, अॼोके शो जो हिसो बणिया। असीं अव्हांखे चऊं था भलीकार कुर्ब तव्हां जा, थैंक यू वेरी मच, भलीकार भलीकार भलीकार। एंड जनाब ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु आहे हाणे, सो उन जे लाइ लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 ते स्पेस ॾियण खां पोइ जॾहिं तव्हां 88 81 ते मोकिलींदव त असां वटि ज़रूरु पहुचंदव। पोइ मोकिले छॾियो असांजे मैसेज, छो त असीं वञी मैसेज जो सेड कंदासीं ऐं कॉल नंबर तव्हांखे ॿुधाए था वठूं, ताकी तव्हांजूं कॉल्स बि अची वञनि। सो जनाब कॉल नंबर जे लाइ असांजो नंबर आहे 0334 3525786। वरी सोचींदा हूंदो त अञा बि सवली सिंधी में ॿुधायां, त पोइ 2 3 4 3 5 2 5 7 8 6 सफ़ा सवली सिंधी में अञा ॿुधायां थो, 2 3 4 5 7 8 6 इन ते कजो काल।

0: जी जनाब गोठ सवाली डंगणू खां असांखे ज्वाइन कयो आहे डंदे शहर जे वेझो अमीर बख्श ऐं जाहिद अली डंगणू साहब मिठा माण्हू अवां जो तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं गोठ हाजी हुज़ूर बख्श रिंद खां असांखे ॿुधनि पिया शादी खान रिंद ऐं अवां सां शामिल आहे दीन मोहम्मद रिंद अयाज़ रिंद अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं नंढड़ो हसनैन रिंद अवां सां गॾु ॿुधे पियो तमामु घणियूं महिरबानियूं भलीकार थैंक यू अवां फरमाइश लिखी आहे फौज़िया जी ज़रूर कोशिश कबी ज़रूर साईं ज़रूर ऐं ॻोठ अच्छा जी अली छलगिरी साहब जो मैसेज पहुतो है अली छलगिरी वाली महरबानी सैयद अली सईद अली लिखण तां चाहियो है पर सईद की जगह सैयद लिखी वो सो बहरहाल सईद अली छलगिरी साहब तांजो महरबानी मोहब्बतू आबाद हो जो शाद हो जो तारण में चंड खीर में खंड में त पे दोस्तो जेकॾहिं असांजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो त जल्दी जल्दी असां जल्दी सां शामिल थी वञो ताकी ख़बर पए त केरु असां सां शामिल थिए थो ऐं केरु असां सां गॾु हूंदो पोइ उन जे लाइ असां बि बिना देर जे अञा मैसेज शामिल कयूं पिया हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली झंडे मरी खां असांखे क़ुर्बान अली ख़ासकेली साहब जॉइन कयो क़ुर्बान तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾ अवांजा अवां असां सां गॾु हूंदा आहियो ऐं अॼु बि शामिल आहियो थैंक यू अवां खे बि चवंदासीं भलीकार तमामु घणियूं मोहबतूं ऐं जनाब असांखे साले पट खां ज्वाइन कयो आहे इरफान अली थेबो साहब इरफान अली थेबो साहब तव्हांजो मोहबतूं तव्हां असांखे खबड़ी भिट खां ॿुधो पिया मोहबतूं तव्हांजूं भलीकार चवंदासीं ऐं हा दोस्तो जेकॾहिं अवां कॉल करे शामिल थियण चाहियो था त जे असां कॉल थोरो जल्दी वठंदासीं छो त असांखे सेगमेंट्स अॻियां हली शुरू करणा आहिनि त कॉल में जे असां अवां सां कंदासीं हाल अहिवाल सो कॉल आहे 2024525786 0334352578 6 उन ते असांखे मैसेज मोकिले छॾियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो अॼो की शो में शामिल त पोइ दोस्तो महिरबानी कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो तव्हां कॉल बि करियो ऐं SMS कयो ॾिसूं था SMS केरु कंदो ऐं कॉल केरु कंदो कॉल जो बि नंबर असां तव्हांखे ॾेई छॾियो आहे SMS जो नंबर ॾेई छॾियो आहे हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे फ़िलहाल हिकिड़ी कॉल अची चुकी आहे शामिल करियूं था ॾिसूं था त असां सां गॾु केरु जुड़ी चुको आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां
1: जी बाबा कंदो
0: हा पंहिंजो नालो ॿुधायो
1: मोहम्मद साले बाबा
0: मोहम्मद साले भा कहिड़े ॻोठ शहर खां टंडो मोहम्मद खान शहर जे वेझो कहिड़े ॻोठ खां ॿुधो पिया अच्छा अच्छा ॿियो तव्हां सां गॾु केरु ॿुधे पियो
1: मुंहिंजा घर वारा आहिनि भाउ आहे चाचो आहे मुंहिंजो यार मोहम्मद मोहम्मद अनीफ मामा यूसुफ
0: हा
1: जी कल असां प्रोग्राम ॿुधो पियो तव्हांजो पर ॻाल्हि इहा आहे त नंबर तव्हां जल्दी पई ॿुधायो ॻाल्हि कोन पए असांखे नंबर माना आयो न पए सम्झ में
0: हा अॼु सवलो सम्झ में अची वियो नंबर
1: ॿुधायो
0: हा शुक्र थियो शुक्र बसि तव्हांजे करे ई त असां आस्ते आस्ते ॿुधायो मिठा भा हा महिरबानी तव्हांजी लख थोरा मिठा भाउ लख थोरा ओके जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते असां सां गॾु ॿियो केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम हलो आवाज़ कटिजी वियो आहे इन करे ॾिसूं था कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी छा हाल आहे क़ुर्बान तव्हां ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो आवाज़ घटि पियो अचे तव्हांजो थोरो हा हाणे आवाज़ सही पियो अचे ठीकु आहे कहिड़ी ख़बर चाह रहा
2: मुंहिंजो प्रोग्राम तव्हांजो भलो हले पियो ॿुधूं पिया शाम जे पहर में जेकी तव्हां फरमाइश हलाई हलंदो ख़ासकेली जी बिल्कुलु
0: आमीन आमीन क़ुर्बान भले अगरि आऊं फरमाइश तव्हां खां कयां त तव्हां असांखे थोरो गाए ॿुधायो त कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदा पर थोरो ॿुधाईंदे छो त मूंखे ब्रेक वठिणो आहे
2: हा बिल्कुलु ॿुधायूं
0: था हा ॿुधाए जल्दी ॿुधायो
2: मुझे महबूब के शाम तुझे जाना उदास
0: साईं महिरबानी लखतरा मौजूद ख़ातिर नज़रात इन ते शॉर्ट ब्रेक जो टाइम थी चुको है आई असा के शॉर्ट ब्रेक वठणो है अस अजी खोड़ गालियो कंदासी दिलचस्प गालियो कंदासी पर तवा हाने कॉल फिलहाल न कजो बटे मिंटन जो ब्रेक हुंदो सफा शॉर्ट ब्रेक है के न वंजो छो त हिकड़े बिन मिंटन जी ब्रेक खां पोइ जॾहिं मां तव्हां वटि वापसि ईंदुसि दिल जूं गालियूं तव्हां छो त हिकड़े बिन मिंटन जी ब्रेक खां पोइ जॾहिं मां

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते

0: सिटी कराई कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
5: जी जना वेलकम बलिकार खुश आमदीद हम अबदो पे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क के हिकी वक्त मां GAFM सखर GAFM मेरपुर खास GAFM लाड़कानू GAFM मोरो GAFM मेहराबपुर GAFM सकरंड GAFM मटियारी GAFM मातली के बुधो पिया शो आहे सिंधड़ी जी शाम आई अवां जो आरजे अवां जो पंहिंजो यूनुस बकारी अवां सां मुखातिब आहे मैसेज करण जो तरीक़ो लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो ऐं मैसेज शामिल करे वठूं पोइ तव्हांजी कॉल वठंदासीं पहिरियों जेको हाणे ब्रेक खां पोइ मैसेज पहुतो आहे उहो मैसेज पहुतो आहे यूनुस भाई आपका नेटवर्क पे बहुत अच्छा शो चल रहा है सलाम क़बूल हो 78 मोरी खां इहो मैसेज राजा HC किशोर कुमार कयो अवांजी महिरबानी ऐं अवां सां शामिल आहे हीरा लाल एंड पवन कुमार अवांजी महिरबानी हाजन उनड़ बुधे पियो ऐं रज़ाक पठाण बुधे पियो अवां लिखियो आहे रज़ाक पठाण बठे वाला ओके जी वेलकम कहते हैं फौजिया सुनना चाहते हो वेलकम वेलकम भलीकार ऐं गोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां असांखे बुधे पियो हबीबुल्ला थेबो लिखे तो शो तव्हांजो वेरी नाइस सदको वञा मिठा भलीकार महिरबानी ऐं असांखे ॿुधे पियो ताज मोहम्मद साहब ताज मोहम्मद ॿुधे पियो ओके जी ताज मोहम्मद साहब ऐं धीरा लाल चौहान असांखे जॉइन कयो आहे तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी साहिल चौहान ॿुधे पियो अवां जूं मोहबतूं वॾा वॾा अवांजा ख़ुशि जो आबाद जो अहिड़ी रीति दोस्तो महिरबानी कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो मैसेजनि सां गॾोगॾु तव्हांजो कॉल्स बि शामिल कंदासीं ऐं इंट्रेस्टिंग गुफ़्तगु कंदासीं त पोइ ॾिसंदासीं त हाणे असां कॉल ते केरु आहे पहिरीं नंबर नोट करियो 03435257 86 असांजो नंबर 2334-3525-786 इहो नंबर आहे ॾिसूं था त असां सां गॾु केरु आहे ऐं पहिरीं कॉल अची चुकी आहे ॾिसूं था केरु असां सां गॾु शामिल थी हलो अस्सलाम वालेकुम जी आवाज अचे पे भाई जान जी रुस्तम पवार छा हाल आहे खुश आहियो ठीक आहियो जी अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ आहे तव्हां ठीक आहियो खुश आहियो चङा भला
6: जी जी तव्हांजी नशरत थोरी थोरी मीरपुर ख़ासि तव्हां सां वटि हले पई पोइ वरी कॉल मिलाइण जी कोशिश कईसीं कॉल लॻी वई
5: न कॉल तव्हांजी महिरबानी मिलाइण जी तव्हां कोशिश कई तव्हांजी कॉल बि मिली वई ऐं अवां सां गॾु ॿिया कहिड़ा दोस्त शामिल थियण चाहिनि था वालेकुम असलाम थैंक यू वेरी मच भलीकार चवंदासीं मिठा माण्हू ऐं ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहिब ऐं किथां खां शहज़ाद लंगणा छा हाल आहे ख़ुशि आहियो ठीक आहियो जी अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाइजो
7: हलो
5: जी जी आवाज़ अचे पियो हाणे ॿुधायो ॿियो केरु तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो तमामु घणियूं महिरबानी भलीकार भा ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब आवाज़ अचे पियो या न ॾिसंदासीं केरु आहे कॉल ते हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल ज़रे ज़रे ड्रॉप थी वञे सो जॾहिं कॉल कयो था त इहो प्लीज़ सोचियो त कॉल तव्हांखे थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाइणो आहे ताकी तव्हांजो आवाज़ सही नमूने अची वञे ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त कॉल जेको आहे जेके महिरबान कॉल कंदा आहिनि उहो आवाज़ बिल्कुलु घटि में ॻाल्हाईंदा
7: आहिनि
5: वालेकुम असलाम केरु साहिब ऐं किथां खां वालेकुम असलाम भाई जान तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो जी छा हाल आहे ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
7: हलो
5: भाई जान तव्हां ॻाल्हाइण शुरू कयो तव्हांजो आवाज़ अचे पियो

0: असुस इहो आहे त बार बार साॻी ॻाल्हि रिपीट न करियो, कॉल अचे थी लाइव कॉल हूंदी आहे, जेको रिपीट साॻी ॻाल्हि करे ॾिसंदासीं त हाणे असां सां गॾु कॉल ते केरु। अब्दुर्रज़ाक दर्स किथां? कंहिं ॻायो आहे तव्हां? कंहिंजी आवाज़ में ॿुधणो
1: आहे?
0: जलाल चांडियो। ओके, कोशिश कंदासीं। हाज़ुर साईं, जलाल चांडियो साहिब जो केॾी देरि करे तयार अचो, ॿुधाईंदासीं। हाज़ुर जी, थैंक्यू वेरी मच। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, शायदि कॉल ड्रॉप थी वई आहे, सो ॾिसूं था त हाणे कॉल ते केरु आहे। ऐं हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, जीअं तव्हां ख़ुशि आहियो, ख़ैरु आहे?
0: जी अलहमदुल्ला। केरु साहब ऐं किथां खां?
2: लोटोथर पार्क वारो मकवाणो मुखातिबु।
0: हले रामचंद, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
2: अलाह जा करम लॻाए, तव्हांजी टीम सारी ख़ुशि वेठी आहे।
0: शुक्र अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे। अच्छा, ॿुधे मौसम थदी लॻी पई आहे, थर जी भूरी भेट ते तव्हां ॿुधो पिया नोट मां, त जेकॾहिं तव्हां थर जे कंहिं फनकार जो या कंहिं बि फनकार जो आवाज़ झुंगारे ॿुधायो।
2: बिल्कुलु,
0: कॾहिं कॾहिं असांजी फरमाइश पूरी करियो। हाणे ॿुधायो।
2: ਤੀਜੇ ਰੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਹੈ।

0: वाह वाह वाह वाह वाह जबरदस्त. थैंक यू थैंक यू. हुए हुए थैंक यू भलीकार चवंदास जबरदस्त आवाज तवाजो आई हाने दिसंदा जी जी दिसंदा से हाने कॉल ते केर. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. केर साहब है किथा का?
1: इरफान अली थे वो तालका साले पर खबरी बिट गुलाबी संगत खान ता संगत.
0: चाल है इरफान थे वो साहब खुश है हो ठीक है हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. ता बुधायो कि आयो ठीक आयो?
0: अल्लाह सही जे एहसान है तवा जो दुआओं इरफान है.
1: हां तवा से कोई सॉन्ग बुधाय जे.
0: वाह वाह थी विंदी
1: तवा जो आहे
0: मुजी बुधन जो मूड आए. बिल्कुल बुधायो बुधायो बुधायो.
1: बिल्कुल भी मूड में आयो सफा.
0: अच्छा असल असल खबर छा है त एकडो असा गानो बुधो हाने थर जी असने प्यारे बुधंदड़ भा का उते हमरा बैठो दिसुना एकडी भिटर का बी भिटर ताई जेको आवाज गर्जे तो वो सिंध जो आवाज केडो होंदो. शाम जो टाइम है प्रोग्राम जो नालो पाए सिंधड़ी जी शाम तपे खबड़ी भिट थर पार कर न बल्कि खबड़ी भिट सखर जेका सालेपट में उता का तवा ने बुधाय बे छा था बुधायो जी.

0: थैंक यू वेरी मच तमाम घणी महिरबानी टाइम वक्त आहे ब्रेक जो पर हिकड़ी कॉल ॾिसूं था केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो ओके जनाब असां कॉल वठंदासीं कमर्शियल ब्रेक खां पोइ त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को

0: मीरपुर, खास कर मीरपुर माथेलो जिन जिन इलाइकन वाइणन वस्तियन बदीन बखर लाड़काने सखर जिते जिते आवाज गूंजे तो सभी मेहरबानी मोहब्बतू भलीकार। हा दोस्तों, ही आहे सिंधड़ी जी शाम शो। आयो यूनिस बकारी शामिल थियण जा ॿ तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ो आहे त मैसेज कयो, लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। ऐं ॿियो तरीक़ो आहे कॉल जो, ऐं कॉल जे लाइ असांजो नंबर आहे 0334-352-5786। इहो आहे असांजो नंबर, ऐं उन नंबर ते तव्हां असांखे मैसेज करे सघो था, कॉल बि करे सघो था। ओके जनाब, सो ॾिसी था वठूं त असांखे कॉल ते केरु थो केरु शामिल थियो आहे। जेसि ताईं मैसेज अपडेट थियनि तेसि ताईं असां वठी था वठूं कॉल खे, ॾिसूं था त कॉल ते केरु आहे। जी हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब आहे, किथां खां? छा हाल आहे जिस्कानी साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला, मतारा जोड़। अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे। मौसम कीअं तव्हां वटि?
1: मौसम खे फसकिलावत लॻी पई आहे, थधिकार ॾाढी आहे, ॾाढी थधी हवा पई हले। माशाला हिन साल गर्मी महसूसु कोन था कयूं, गर्मी आहे ई कोन
0: थो। अलाह करे थधाण में हुजो। अच्छा भला, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? बैत कोन्हे, अॼु ॻाइण जो वारो आहे, ॻाइणो पवंदो। ॾिसो, ॻाइण ऐं रोअण हर माण्हू खे अचे थो, माना जेकॾहिं मूंखां तव्हां पुछंदो ॻाइण न ईंदो, रोई ॾेखारींदसि तव्हांखे। हाज़िर आहे, ऐं पंहिंजे इंजीनियर खे चवंदो त हाणे हाणे उहो गानो सर्च करे तव्हांजे अॻियां रखे थो। केॾी देरि करे था यार, चयो तव्हांखे ॿुधायूं था, ॾिसूं था कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, अदा कहिड़ो हाल आहे?
0: जी शुक्र है, दुआ लॻी पई आहे।
2: घोट बाबू वेरो थरपारकर खां ॻाल्हाईंदो, दिलीप कुमार मेघवाड़।
0: जी जी अदा दिलीप, ॿियो अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे?
2: जी मलकमोंद बलोच रामचंद मकवाण मोहम्मद।

0: वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भला जिक्र एवा के चोजे थोड़ो गुनगुनाए बुधायो, थोड़ो गाए बुधायो तो गाए नहीं दो आ।
1: यो तमाम मुश्किल कम आए
0: न मुश्किल छुआ मु पेरी सवेरे जिस्कानी साहब के बुधायो पे रोण आई गायण हर मानो गेंदो आ।
1: रोण गायण खिलणी वाजे सई मने हर इंसान गेंदो पर केंजो आवाज सही होदो
0: आवाज जो मसलो तो आई कोन न असा थोड़ी रा चोंदा रूबरू आपदा परिन वांगर गाय बुधा असी चोंदा भले ई ई माना देखो न मिडे रूह के रुलाए थोरो आए
1: कने कने मुखे याद सा यार केंदा कयो आए कदी हिक दी मुखे याद तैयार कंदा पियो तो मुझे मन हवाले मांदो मुझी दिल हवा की दीवाने बस एकड़ी लाइन तांगे।
0: वाह वाह वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त लख थोरा साईं ये तानी मेहरबानी मौजे समईन ई गायो गालायो आई हाल अहवाल डियो छो त अवां बुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क के आई GFM 88 रेडियो नेटवर्क अवानी खिदमत में पेश कर रहयो आए अवां जो पंजो शो जिन जो नालो है सिंधड़ी की शाम। केर है कॉल ते हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब किथा का
2: आज दला बच्चा यनवान श्राम शाहपुर तरफ
0: शाहपुर दरपर का दरपुर का मुदो पे। अच्छा शाहपुर दरपुर केड़ी जिले में है साईं?
2: जिलो मटियारो तालुको मटियारी
0: तालुको मटियारी ए जिलो भी मटियारी है ना। मेहरबानी लख तारा जुग जुग जियो सोना साईं। कुर्ब कुर्ब लख थोरा डिसनासी कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम इतना भा जरूरी का खालिक लाशारी।
0: खालिक लाशारी खुश आई चंगो भलो
2: हां भारत जो दुआ माशाल्लाह प्यार
0: है खैर लगो पे दुआ लगी पई है खालिक जकरे आवाज थोरो बुधण चाहियो ता जो छा को कलाम जुंगारे बुधाई नो
2: जी जी
0: बुधाई भला थोरो वावा थी वने

वाह वाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में जवां सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि ऐं जलाल चांडियो जी सदा बैकग्राउंड में गूंजे पई। आवाज़ ॿुधो पिया जलाल चांडियो साहिब जो ऐं उस्ताद बुखारी शायरीअ केॾी देरि करे तयार अचो। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। केरु साहिब ऐं किथां खां जी? जी छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? आवाज़ तव्हांजो कटिजी कटिजी अचे पियो। तव्हां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे? अव्हां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे बीठा माण्हू? फैमिली ॿुधे पई? ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू। जी जी जी, अॼु उहो कोन हलंदो, अॼु वरी को ॿियो हले पियो, तव्हां ॿुधी वठो। वालेकुम असलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां? फ़क़ीर आमिर जिन जी जो ख़ैरु हुजे। कहिड़ा हाल आहिनि फ़क़ीर साईं? जी जी, आमिर थोरो तुंहिंजो मिठड़ो आवाज़ ॿुधूं था त पोइ कीअं ॿुधंदासीं? तव्हांजो जेकॾहिं आवाज़ ॿुधणु चाहियूं त कीअं ॿुधंदासीं? महिरबानी महिरबानी। पोइ थोरो भला गुनगुनाए झुंगारे ॿुधाए सघो था? जेको तव्हांखे वणे, तव्हांजी दिलि जी ॻाल्हि जेका वणे।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कस्टम्स हाउस से

0: कब्जे वारी कोशिश भी नाकाम बनाई वही। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 10 खारजी दहशतगर्द मारजी व्या। दहशतगर्दन की फायरिंग दौरान बिन कस्टम्स ऑफिसर समेत 6 जवान शहीद थिया। सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमन ते गौर। परे वजीर तरमीमन जो जायजो वठण लाइ सूबाई वजीरनि ते बधल कमेटी जोड़े छॾी। सीनियर वजीर शचिलना मेमण, सूबाई वजीर नासिर शाह, सईद खानी, जियाउल हसन अंजार, नजमी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल। परे वजीर मादरी शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वस्ती कंसल्टेंट मुक़रर। इजलास खे मकानी कानून में तरमीमन बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा अख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं। वॾे वज़ीर मादली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509 03000310509।
3: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान डोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अवां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जी लाइन आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
5: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03000338569।
4: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03201800003

0: में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहे
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: इन जो इलाज भी थी सके तो तहांखे त 13 साल आ पर को एड़ो मानु 16 17 साल वारो भी अलहमदुलिल्लाह डॉक्टर साहब घुमायो आ बाकी अल्लाह ताला जी एकड़ी जका मैन्युफैक्चर आही उन जी केयर भी नथो करे सके
1: अल्लाह जो शुक्र आ अस घुमाऊ ना पेथा पर
0: हाथ कम नथो करे इंशाल्लाह इन में ताजो सुन थल होंदो इंशाल्लाह ता डॉक्टर साहब का रेगुलर मुसलसल इलाज करायो से अल्लाह में उम्मीद आ रिजल्ट मिलंदो ताखे इए एकड़ो दोस्त डॉक्टर साहब वटिंदो गंबड़ जो उहो भी इएं उनजो भी हथ भी कम न कंदो हो बाह मथे भी न करे सघंदो अलहमदिल्ला डॉक्टर साहब वटि उहो माण्हू हाणे ईंदो आहे त चवंदो आहे साईं मुंहिंजो हथ बि कमु करे थो आङरियूं बि कमु कनि थियूं हाणे गंबट मां जेको छॾे करे हिते अचे थो डॉक्टर साहब वटि हिन मां अंदाज़ो लॻायो त अल्ला ताला जी का देन आहे अल्ला ताला जी तरफ़ां का शिफ़ा आहे तॾहिं माण्हू अचनि था डॉक्टर साहब वटि एतिरी रश ॾिसो हूंदी आहे पर इहे डॉक्टर साहब जो महिरबानी आहिनि असांजे करे एफ एम ते अचे थो ऐं अव्हां जहिड़े दोस्तनि खे मालूमात ॾियण जे लाइ भई हिन बीमारी खां हीअं बची सघिबो हिन जो ई इलाजु आहे हिन जो ई इलाजु आहे ठीकु आहे साईं वधीक एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहब तव्हांखे ॿुधाईंदो जी सर डॉक्टर साहब
2: हांजी सर बिल्कुलु जेकॾहिं अदे पहिरियां बि पुछियो आहे त असांजो पहिरियां बि अदे खे इहो ई जवाबु हूंदो त तव्हां रूबरू अचो ऐं हाणे बि अदे खे इहो ई चवंदासीं त बिल्कुलु रूबरू अचो छो जो फालेज पैरालाइसिस यानी पैरालाइज़्ड हिकिड़ी जेको बांह थी वञे यानी उन में खोड़ सारियूं वजूहात हूंदियूं आहिनि ब्लड सर्कुलेशन ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि रगूं डेमेज थी वेंदियूं आहिनि त जॾहिं हिकिड़ी शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे पर अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं केसिस असां वटि आया आहिनि ईंदा आहिनि त हुननि खे जॾहिं दवाऊं ॾींदा आहियूं त अलाह ताला जी महिरबानी सां हू बिल्कुलु ठीकु थी वेंदा आहिनि हाणे बि अंडर ऑब्ज़र्वेशन असां वटि ॿ चारि अहिड़ा पेशंट आहिनि पर अलाह ताला जी महिरबानी सां रिसेंटली अॼु बि हिकिड़ो पेशंट आयो जंहिंजो लेडीज़ पेशंट हो जंहिंजो बिल्कुलु इहो हिकु बांह जेको आहे हुनजी सुन हुई लेकिन हाणे हुनजी बांह उहा हल्की थी आहे ऐं हुन में इम्प्रूवमेंट अचणु शुरू थी वई आहे इहो अलाह ताला जा लख अहसान आहिनि सो अधे खे ॾिसी ॾींदासीं ज़रूरु जेको ज़रूरु भरू ॾेखारे
0: हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ गदगद जो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर एफ एम 94

0: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जडे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
0: मां भी वही चवा उनके ता ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे ते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते 10

0: आपतेजी लाइव आसिम हुसैन आरआई 0307-35-92120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमन ते गौर, वड़े वजीर तरमीमन जो जायजो वठण लाइ सूबाई वजीर ते बदल कमेटी जोड़ी छी। सीनियर वजीर शजीर इनाम मेहमान, सूबाई वजीर आसिफ शाह, सईद खानी चालनजार, नजमी आलम ए सदीम बलोच कमेटी में शामिल। वड़े वजीर मुआद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना जो इजलास। सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन की तैयारी लाइ अशरफ पास्ती कंसल्टेंट मुकर्रर। इजलास के मकानी कानून में तरमीमन बाबत ब्रीफिंग डींदे बुधाया वो मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ए वाइस चेयरमैन जा इख्तियार ए जिम्मेवारू वाज़े कयूं वेंदियूं। वरी वजीर मुआद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारन के वधीक फाल ए जवाबदेह बणायो वेंदो।
2: सिंध काबीना बलदियाती निज़ाम में जेको आहे रिफॉर्म्स करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, छा मुशरफ तौर वारो पुराणो निज़ाम बहाल पिया कयो छा?
3: सूबाई असेंबली जो अख़्तियार आहे मुशरफ कहिड़ा मन सुञाणा
2: सीएम जो प्रेशर आहे तव्हां ते या इस्लामाबाद जो प्रेशर आहे, पिंडी जो प्रेशर आहे, कंहिंजो प्रेशर आहे? निज़ाम अचानक एमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल कई सिंध काबीना जी ऐं रिफॉर्म सां
3: प्रेशर जेकॾहिं हुजे हा त असां हीअं न ॻाल्हायूं।
4: जेकॾहिं कंहिंखे लॻे थो त सिंध में डिवीजन्स घटि आहिनि, ज़िला घटि आहिनि, त हुन ॻाल्हि त थी सघे थी न? ज़िला ठाहे सघजनि था, डिवीजन्स वधाए सघजनि था।
5: सिस्टम फेल थी वियो आहे जेको चवे थो त उनखे महिरबानी करे इस्तीफ़ा ॾियणु खपे, जन पोइ हुन सिस्टम में पाण आहिनि
6: बरोच, पर सिंधी आहियूं, सिंध में रहूं था, सिंध सां मरंदासीं, सिंध सां जीअं
3: हुनखे वधीक एम्पावर करणु खपे ताकि लोकल माण्हुनि जा मसला हल थियनि। सीएम साहब कमेटी ठाही आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, मां सम्झां थो त उहो हिकिड़ो पॉज़िटिव क़दम आहे। ऐं हीअ जेके मसला मसाइल हलनि था सूबे जे हवाले सां, पंहिंजे हवाले सां, उन जो हल बि हिते ई निकिरंदो।
7: मुशरफ वारो दौर बिल्कुल बहाल नथो थी सघे
8: त जेके चेयरमैन आहिनि या मेयर्स जेके आहिनि उहे कंटिन्यू कंदा जेसिताईं नई इलेक्शन थिए थो, उहो ज़रूरु थियो आहे। बाक़ी कुझु जेके अमेंडमेंट आहिनि उहे असेंबली में ईंदियूं, स्टैंडिंग कमेटी में वेंदियूं, स्टैंडिंग कमेटी जेके रिकमेंडेशन कंदी।
1: छा सिंध में अॻूणे आमिर परवेज मुशरफ वारो मकानी निज़ाम बहाल थी रहियो आहे? KTN न्यूज़ जो सिंध काबीना जे मेंबर्स ऐं MPS खां सवाल। निसार खोड़े चयो आहे त मुशरफ खे नथो सुञाणा, सूबे लाइ सिंध असेंबली को बि निज़ाम जोड़े सघे थी, कंहिंजो बि दबाउ न आहे। निज़ाम जी बहितरी लाइ केरु चवे थो त एतिराज़ न हुअणु घुर्जे। सूबाई वज़ीर सईद ख़ानी चयो आहे त सिंध में को बि पुराणो मकानी निज़ाम न ईंदो, मकानी कानून में तरमीमनि जी ॻाल्हि थी रही आहे, निज़ाम तब्दील न थींदो। सिंध में डिवीजन सिया सिला वधाइण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी। MPA सरदार चांडियो चयो त निज़ाम खे नाकाम छॾींदड़ घरू वज़ीर जी कुर्सीअ ते छो वेठो आहे? मोहम्मद बख्श महर चयो त मकानी निज़ाम ते वधीक मुशावरत थींदी, को बि दबाउ न आहे। राजा रज़ाक चयो त निज़ाम तब्दील न पियो थिए, सुधारा अचणु घुर्जनि। मोहम्मद अली मलकानी चयो त मुशरफ वारो मकानी निज़ाम न ईंदो।
9: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372-02424601100।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03200180003।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5451-456 ऐं तौकीर अहमद 0306

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: Water is the lifeblood of our region. It sustains millions of lives, nourishes our lands, and secures the very future of our coming generations. It must never be weaponized. It cannot be used as an instrument of coercion, nor can it ever be exploited for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both letter and spirit.
1: पाणी खिते जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे. पाणी खे हथियार तौर इस्तेमालु करण जी इजाज़त न ॾींदासीं. पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमालु कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो. शिंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरकारी इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुरिजे. मका दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिंजे ख़िलाफ़ु नाहे. इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश बि ख़िते में अमन जी बहाली लाइ अहम आहे. दहशतगर्दी बि ख़िते जे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे. पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे. ॾखण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे. सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमनि ते ग़ौर, पर वज़ीर तरमीमनि जो जाइज़ो वठण लाइ सूबाई वज़ीरनि ते वधल कमेटी जोड़े छॾी. सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मिमण, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, सईद ग़नी, जालंजार नज़मी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल. पर वज़ीर मुआद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास. सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ती कंसल्टेंट मुक़ररु. इजलास खे मकानी कानून में तरमीमनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा अख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं. वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो.
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि

ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहराबपुर, 03000310509, 03000310509।

0: जी, तो हमने आपको पता बता दिया कि शाही बाजार आप कांटेक्ट करेंगे 0333305109 पे, आपकी बात होगी मलिक जफर इकबाल या एम सिद्दीक से, वहां से आपको शाही बाजार से प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर जो दोस्त, जो हमारे भाई बहनें हमसे बात करना चाहते हैं ब्यूटी टिप्स पे, कुछ हमारे साथ कोई ब्यूटी इस वक्त जो है कि डायरेक्टली डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन प्रोडक्ट के हवाले से रिप्रेजेंटर आपका भाई यहाँ पे अवेलेबल है आबिद चौहान, आपको मजीद एक्स्ट्रा ब्यूटी टिप भी देगा। तो हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है, नोट कर लीजिए, दिल थाम लीजिए हमसे बात करने के लिए, और हम फोन पे नजरें टिकाए बैठे हैं कि नंबर बता दी, सबसे पहला लकी कॉलर कौन होता है। ओके, तो नोट डाउन 0300-931-9667, मैं रिपीट कर रहा हूं 0300-931-9667, ये है हमारा लाइव कॉलिंग नंबर, इस पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, और जो है कि म्यूजिक पे भी बात होगी, पोएट्री भी होगी, दिलचस्प बातें भी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बात हमारी जो है कि वो ब्यूटी भी होगी, और ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया दीवानी है। ब्यूटी में मैंने पहले ही बता दिया कि तमाम तर शोरा की शायरी ब्यूटी भी होती है। हमारे बहुत ही मुल्क के फेमस पॉपुलर सिंगर अबरारुल हक से पूछा गया कि अबरारुल हक आप जो है ना कि ज़्यादातर जिक्र जो है ना कि अपने सॉन्ग्स में ब्यूटी का करते हैं और लड़कियों का करते हैं, तो अबरारुल हक ने हंसी मजाक में कहा था कि नहीं, आइंदा मैं भैंस पे गाना लिखूंगा। तो खैर, कहने का मकसद है ब्यूटी जो है कि खुदा ने इंसान को खूबसूरत बनाया है, तो डेफिनेटली खूबसूरत चेहरों के लिए हमारे पास खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम और मिल्क राइस ब्यूटी सोप और मिल्क राइस एक्ने क्रीम, इनके इस्तेमाल से हम दावा कर रहे हैं कि आप अपनी जल्द में बहुत जल्दी से असर पाएंगे और अपना चेहरा साफ और खूबसूरत देखेंगे। हमें शायद कॉल आ रही है, तो हम फर्स्ट कॉलर कॉल अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, केयर साई कथा का हेलो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, केयर साई कितना का, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं अली रजा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज को थोड़ा सा क्लियर किया जाए। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन लकी कॉलर की पहली कॉल हमें मौसूल हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि आप अगेन ट्राई करेंगे, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। अगेन हम अपना कॉलिंग नंबर बताएंगे 0300-931-9667, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? हुसैन बख्त सियाल, वेलकम मलिकार, खुश आमदी जी हां, रुशाद के और पखर अगले मेरे भाई, कैसे हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, करीम के करम है, और भाई की दुआएं हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और पहली बार आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: बिल्कुल, मैं पहली बार ये FM 88 पे आपको कॉल की है। लव यू, थैंक यू, वरी मेहरबानी, लख लाइक कुर्ब अवां जा, छा कंदा थोरो अवां पंहिंजे बारे में तो ॿुधायो मूंखे।
1: बिल्कुल सर, बस हार्मो वगैरह कंदा हूं
0: पांच। क्या बात था, असांजी सिंध जी, मुल्क जी, सजे जी, पाकिस्तान जी जगह त अक्सरियत जगह त हर पे साईं लाग्या पियल आहे।
1: बिल्कुल, असांजो मुल्क आहे ज़रई मुल्क आहे, बिल्कुल ज़रई मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह असांजे मुल्क में लातादाद फसल मेवा थियनि था, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुशि नसीब आहियूं जो पंहिंजे मुल्क में पंहिंजी उपज करे पान खाऊं
0: था। क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे, लाजवाब साईं। अच्छा, अवां असां प्रोग्राम ॿुधी रहियो, थोरो घणो असां अवां खां जेको आहे तकलीफ़ ॾींदासीं, असां पंहिंजो प्रोडक्ट्स बार बार रिपीट कयूं पिया, अवांखे हिकु बि असांजे प्रोडक्ट जो कंहिंजो नालो यादि थियो आहे हिन महिल ताईं? बिल्कुलु, प्रोडक्ट कहिड़ी आहे असांजी? जी जी, मिल्क राइस ब्यूटी शो प्रोग्राम जो नालो आहे, असांजो टे प्रोडक्ट मुसलसल मां ॿुधायां थो पियो।
1: हा
0: न इहो हींअर मां प्रोग्राम जॉइन कयो, मां रेडियो खोलियो त हले पियो, मां मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ॿुधो, ऐं तव्हां ब्यूटी क्रीम ॿुधो, अच्छा क्रीम बुधो तो मां तहां के बी प्रोडक्ट बुधाई दोला पो असा फर्दर बे टॉपिक ते भी गाल बोल कंदा से असा वट ब्यूटी सोप भी आहे असा वट एक्नी क्रीम भी आहे एक्नी क्रीम मोहिड़ा वगैरह जगह स्पेशली जो यंगस्टर्स के अवा की एज अल चाहे मुख्य खबर ना है लेकिन यंगस्टर के मोस्टली जो ना उ मोहिड़ा जो शुरू में निकरंदा एक उम्र होंगी है उन दाग खतरनाक हूँ उन दाग के खत्म करने ही प्रोडक्ट है असा वट एक्नी क्रीम अच्छा सोबो देरो इतना मेहराबपुर का केतरो डिस्टेंस आए अवा के वेजो
1: बस सही पारेसरी भाई शहर है ना बाजिया समझो त 17 किलोमीटर
0: सही जबरदस्त
1: मेहराबपुर असा के वेजो आए असा के 8-9 किलोमीटर जो मुसाफिर
0: क्या बात है छा चवण चाहिंदो जो के असा जन प्रोग्राम जो थ्रू अवा के जको त भर पासे मेहराबपुर वाला सब दोस्त बुदन पिया
1: माशाल्लाह अवा के प्रोग्राम बेहतर लगे पे अवा जो जो को आ खुलस भरा जेके अल्फाज ना प्रोग्राम की जिया जान कयो है असन जे लाय जेके मापत भया लव पेज के आ संगे पसंद आया है असन मजबूर के आने का
0: मां मां मां परस्तार आया मां सिंध वारन जो गुलाम कंदो आशकन जो एतराम लगंदी ना है पहजी कहबे अमीर सा दिल फकीर जिया फकीर सा
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
0: ये फकीर मिजाज आ है ना
1: जा दोस्त आयो असी जा जा भाई रहयो खादी मायो आ इंशाल्लाह ताला ही रस्तो ही यो पर
0: मां दोस्तियों वधाइणी एफएम ते आयो है मुझे भा पर उन सा गरुगर पेंजी प्रोडक्ट भी एकड़ी आ हुआ घट में घट एकड़े भेरो आजमाण शर्त आ है उ एक भेरो आजमाण असा चयो से ना त दावा नहीं हम दलील देते आ दलील देण ला अवा जो थोरो तावन दरकार आ अच्छा शादीशुदा है गैर शादीशुदा
1: हां बिल्कुल सही शादीशुदा
0: है आए तो डाडो खतरनाक सवाल आ आए तमा जो डाडो खतरनाक सवाल तो ऑन एयर सजी दुनिया सामू मेरापुर है बरपास सामू पुछौ ता कुछ मर्द एड़ा हुंदा ना जेके शादी पेंजी लगाइंदा ना औरतू पेंजी उम्र लगाइंदी उन छा अवा इए त ना है ना
1: नफर ना आऊ शादी शुदा या अल्हम्दुलिल्लाह मुजी बाद 46 साल हो मेरा ना मां पाजी उम्र लगाइंदम ना पां शादी लगाइंदम
0: मर्द मर्द उम्र कोन लगाइंदा शादी वद में लगाइंदा
1: ना ना आ शादी कोन लगाइंदा
0: शादी कोन ता लगायो उम्र कोने को जवान आयो डेफिनेटली भाभी अजा फरमाइशू कंदी हुंदी तो मुखे कपड़ा आने दे मेकअप आने दे ज्वेलरी आने दे पाण भी शादीशुदा आया सो ये फीमेल जो ख्वाहिशूं जेके अंदर ॾाढियूं हूंदियूं आहिनि प्यारियूं हूंदियूं आहिनि नंढी नंढियूं ऐं ख़ूबसूरत जेको आहे त ॾिसो न ख़ूबसूरती सॼे जहान जी फीमेल सां ई आहे असांजा बछड़ा बि आहिनि असांजूं पाण जेको आहे त मैरिड बि आहियूं सो इन्हनि सां ब्यूटी आहे ऐं इन्हनि जे लाइ जेको आहे त ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि अवां छा भला रिकमेंड कंदो असांजी प्रोडक्ट आज़माइण चाहींदो हिकु भेरो
1: क्या
0: बात आहे नेक्स्ट प्रोग्राम में मां उम्मीद थो कयां नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा ॿुधो ॿुधो ॿुधो ॿुधो ॿुधो माफ़ु कजो मां हूअं हालांकि तव्हांखे ॿुधण लाइ मां इहा कॉल जेका आहे अटेंड कई आहे पर थोरो पैगाम पंहिंजो वाज़े कंदो हलां छाकाणि त जेके ॿिया दोस्त असांजा ॿुधी रहिया आहिनि त उहो नेक्स्ट जॾहिं कॉल कनि त पोइ उन्हनि खे क्लियर हुजे त मां को घणी का वॾी शर्त नथो रखां असां चयोसीं न हम दावा नही दलील देते हैं दलील लाइ इहो आहे त तव्हां असांजी दलील ॿुधण लाइ तव्हां इहा हिकु भेरो जेको आहे त इहा परचेस कयो इहे शयूं ऐं तव्हां जेको आहे त इस्तेमालु कयो उनखां पोइ असांखे रिज़ल्ट ॿुधायो हिन जो त पोइ असां उनखे क्वालिटी अञा बहितर मेंटेन लाइ बि ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं जेका असांजी दावा आहे उनखे जेको आहे त तव्हां दलील जी हद ताईं पहुचायो बि मां तव्हांखे हेल्पलाइन नंबर हिकु भेरो ॿीहर थो ॿुधायां पोइ उनखां पोइ तव्हांखां को असां को न को पैगाम ॿुधंदासीं हेल्पलाइन असांजो नंबर अथव जंहिं ते तव्हां कॉल करे जेके मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक साहिब सां ॻाल्हि ॿोल करे शाही बाज़ार मेहराबपुर मां इहा प्रोडक्ट असांजी वठी सघो था 3555-10 कंदो रहंदुमि प्रोग्राम तव्हां असां सां जुड़िया रहिजो ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं थींदियूं ट्रैक बि थींदा म्यूज़िक बि थींदी ऐं शेरो शाइरी बि थींदी अवां छा पैगाम ॾियणु चाहींदो दोस्तनि खे संगत साथ खे पंहिंजे ओड़े पाड़े खे
1: ये तवाज प्रोग्राम दिल लगाए बुधन आई जो पाए सो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कन आई जल्दी खरीद करे ये सोप प्रोडक्ट जो ब्यूटी क्रीम आ वठी करे आई यूज कन आई आवा के जल्दी में फीडबैक दे
0: असा के फीडबैक ता जी कॉल जो तो सुभाने खपंदो मां नालो नोट करे छड़े है ठीक है मुझे बा आवा जो फीडबैक तो मुझे सुभाने खपंदो मुझो अवां जो साथ रहंदो इनशाला डेली ऐं जेको आहे त अठे खां नाए ताईं ऐं नाए खां वरी जेको आहे त असांजो सिलसिलो ॿियो जुड़ंदो उन में बि मां तव्हां सां गॾु आहियां मां हिते बसि FM 88 जेको आहे न हिते हंधु बिस्तरो आंदो आहे उहो खणी करे असां गॾु हूंदासीं सो ख़ुशी थी तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करे मुंहिंजा भाउ प्रोग्राम ॿुधंदा रहिजो थैंक यू बाप, थैंक यू, लव यू, लव यू, वेरी मेहरबानी, ओके लव।

जी त दोस्तों मिल्क राइस ब्यूटी शो से गड आऊँ आया आबिद चौहान आवाम बुधी रहा हो जी एफ एम 94 मेहरापुर सुबह देरे का तमाम एक प्यारे मानू से गाल बोल थी बिल्कुल इनमें कुछ शक ना आए त मुझी सिंध जहाँ सभी मानू जन प्यारा उसे चाहे पो उर्दू बोली गालाइंदड़ होजन या सिंधी बोली गालाइंदड़ होजन सिंध एक जो मल्टी इतने कास्ट है मल्टी जो कल्चरल है पर सिंध में सब का जो सिंधी ट्रेडिशन कल्चर है सो सिंधी सबाजड़ान तमाम प्यारा ऐडी प्यारी गुफ्तगु थी सुबह दौर का दोस्त जी अस नेक्स्ट कॉल ला भी वेट कर रहा हूँ कॉलिंग नंबर में एक भेरों बीह रिपीट कदम तो 0300 9319 667 से अवा असा कॉल कर असा फीडबैक भी दई सकूं असा प्रोग्राम के हवा से असा प्रोडक्ट के हवा से ब्यूटी टिप्स भी जान भी वही सकूं था।

जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान ऐं तमामु तर ख़ूबसूरत चहिरनि जे नाव, ख़ूबसूरत गीत, इंजॉय द ट्रैक।

अच्छा जी, ब्यूटी टिप्स के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला और बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन ये चीजें इस्तेमाल करने के बाद वो ये है कि एक तो आपने जो है कि मामूल की रूटीन में जो है कि अफोर्डेबल अगर हैं, डेफिनेटली अफोर्डेबल हजरात ही जो है कि ये चीज़ें करेंगे, और हमारी दुआएं हैं कि जो हमारे भाई हमारे दोस्त जो है कि अपनी जॉब कारोबार बिजनेसेस कर रहे हैं, वो अपनी छोटी छोटी जो है कि ख्वाहिशात अपनी बेगमात की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की वो पूरी करें, और इतनी कोई महंगी प्रोडक्ट्स नहीं हमारी। शादी ब्याह के दिनों में प्रोग्राम्स में हमारे सिस्टर्स, हमारी वाइफ्स और जो है कि घर में जितने भी छोटी हैं कज़न्स ये वो लाखों रुपए हज़ारों रुपए खर्चे हो जाते हैं कपड़ों पे और ब्यूटी टिप्स पे खूबसूरत दिखने के लिए। लेकिन जब तक आपका चेहरा ब्यूटी में सबसे पहले जो है ना कि हम जब पार्ट ऑफ द बॉडी में अपनी में बात करते हैं कि सबसे जो है कि किसी की तारीफ़ करनी हो तो खूबसूरत, तो खूबसूरती में सबसे पहले ही हमारी नज़र जो है कि चेहरे पे जाती है। अगर चेहरे पे दाग धब्बे होंगे तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे खुदा ने सबको खूबसूरत बनाया, तो उसको जो है कि डेफ़िनेटली जो है कि ये हमारे सीरम्स हैं और क्रीम है, सोप है, एक्नी क्रीम है, ये डेफ़िनेटली मरहम का जो है कि उस पर असर करेंगी, काम करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो है कि अपनी बहुत ही एक छोटी टिप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप जो है कि सुनने के लिए बेताब होंगे, मुफ्त मशवरा है तो थोड़ा सा देर से मिलेगा आपको, वो ये है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है ना। बहुत ही आसान काम बता दिया ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर सोते रहें और कोई काम काज ना करें। आपने नींद पूरी करनी है, नींद पूरी करने की और कोई काम काज ना करें। आपने नींद पूरी करनी है,

पर मैंने फ्री में दे दिया, अगर कदर की मेरी आपने, और मैं यकीन करता हूँ कि यकीन से कहता हूँ कि अगर आपने ये हमारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मेरे इस छोटे से टिप पे अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, विद इन फ्यू डेज आप खुद में एक तब्दीली पाएंगे और मुझे कॉल करके दुआएं देंगे। एक टिप मैंने आपको दे दिया, बाकी जो है कि प्रोग्राम के मिड में, मिड तो हो चुका है, प्रोग्राम के आगे हम एंड तक दो टिप और आपको दे देंगे, क्योंकि मुफ्त की जो चीज़ है ना उसकी कदर कुछ कम हो जाती है, फिर हम जो है कि आपको ज़्यादा देंगे तो वो आप उस पर सब पे अमल नहीं करेंगे। सबसे पहला आपने मशवरा मेरा ये आपने इस्तेमाल करना है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है।

जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी FM 94 मेहराबपुर। आपकी कॉल का हमें वेट है और हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया है 03000310509। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। हम तब तक आपके लिए सिंधी में एकड़ो खूबसूरत ट्रैक पे लगे हूँ था उन ट्रैक का पो असा के बैक बैक इंदा से बो टिप डींदे।

जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान. एतिरे कहिड़ो प्यारे प्यारो प्ले थी रहियो आहे, दिलि कोन थी पई चए हिन खे डिस्कनेक्ट करण ते. सो हिन करे इहो बैकग्राउंड में हलंदो रहंदो, असां वहां सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदा रहंदासीं. ऐं नेक्स्ट ट्रैक जी जेका फरमाइश थी आहे असां नोट डाउन करे छॾी आहे, उहो बि असां प्ले कंदासीं. हिकिड़ो कमेंट शामिलु कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में. कमेंट असांखे टैक्स्ट कयो आहे आर डी किंग, उहो पुछे थो टॉपिक क्या भाई. अच्छा ठीकु आहे, एतिरो टॉपिक क्या भाई. ऐं खत्री से राशिद अली, खत्री खत्री, थोरो इहो कन्फ्यूजन मूंखे थिए पियो. बहरहाल अव्हांजो कमेंट असां शामिलु करे चुका आहियूं प्रोग्राम में. टॉपिक अॼु जो मुंहिंजा भाउ जेको आहे न, तमामु लिसनर्स खे असां ॿीहर पैगाम ॾियूं था. अॼु जो टॉपिक फ़क़्त एंड फ़क़्त ब्यूटी आहे, ख़ूबसूरती आहे. सो ख़ूबसूरती में निखार आणण लाइ अव्हां वटि जेकॾहिं फ्री जी टिप आहे ऐं ॿिया सभई दोस्त भेनरियूं असांजा ॿाहिरि मुस्तफ़ी थियनि त उहो असांखे ॾियो. हिकिड़ो टिप मां ॾेई चुको आहियां, फ्रीअ जो टिप. अव्हां बि जेकॾहिं टॉपिक इहो आहे त अॼु जेको बि दोस्त कॉल कंदो उहो असांखे या कमेंट कंदो उहो असांखे हिकिड़ो फ्री जो टिप ॾींदो.

क्या बात है, तमामु इंतिहाई खूबसूरत ट्रैक हुयो ऐं ट्रैक खे पॉज़िटिवली वठंदे हर माण्हू पंहिंजी हम सफ़र जी इहा ई तारीफ़ करे थो, उहा केॾी न ख़ुशि थींदी। ऐं जेकॾहिं असां जेकॾहिं इन ट्रैक जो नैगेटिव इम्पैक्ट ॾेई कंहिं ॿिए ते जेकॾहिं इहो गीत ॻाईंदासीं त उहो ॾाढो बैड इम्पैक्ट पवंदो। सो पंहिंजे लाइफ पार्टनर खे कॾहिं ख़ूबसूरती कोई पोइट्री डेडिकेट कयो, को गीत डेडिकेट कयो, दोस्तनि सां जीअं झुंगारींदा हो ईअं पंहिंजे लाइफ पार्टनर खे न फ़क़ति सिर्फ़ु गीत डेडिकेट कयो पर उहो गीत झुंगारींदे। प्रोडक्ट जेको आहे त मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ऐं मिल्क राइस ब्यूटी सोप ऐं एक्नी क्रीम वठी वञी करे गिफ्ट जी सूरत में पोइ उनखे गीत को डेडिकेट कयो। गीत ते यादि आयो असांखे हिकिड़ी ॿी फरमाइश थियल आहे, उनखां अॻु में मां अव्हांखे हेल्पलाइन नंबर ॿुधाईंदो हलां जेकॾहिं अव्हांखे इहा प्रोडक्ट असांजी खपे थी पई। हिकु न आहे टे चारि प्रोडक्ट अव्हांखे ॿुधायूं, द ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप, एक्नी क्रीम ऐं वाइटमिन सी, त पोइ इहे अव्हांखे मिलंदियूं मेहराबपुर शाही बाज़ार मां। ऐं कॉन्टेक्ट नंबर हेल्पलाइन आहे 03000315109। जी दोस्तो, ट्रैक रेडी आहे, तमामु इंतिहाई ख़ूबसूरत ट्रैक, गॾिजी इंजॉय कंदासीं सभई सिंध जा प्यारा प्यारा माण्हू।

वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो में मैं हूं आबिद चौहान। दोस्तों अवां ट्रैक भी इंजॉय कियो गरुगर आए असो प्रोग्राम साइलेंटली बुधी रहे हो, बिल्कुल जिस तरीके से बच्चे जो है ना कि क्लास में खामोश हो जाएं टीचर की डांट पे, उस तरीके से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक बच्चे ने जसारत की जो है कि कॉल करके हमें जो है कि हमसे बात करने की कोशिश की और बहुत अच्छी प्यारी बातें की। हम वेट कर रहे हैं आपकी कॉलिंग का, लेकिन मुझे यकीन है ये प्रोग्राम जो है कि हमारी माएँ बहनें अदियों भेनरू बे ॿुधी रहे हैं, वो बिल्कुल खामोशी से पैसे कम की शे ॿुधी रहे हैं। उन्हें कम की शे आऊँ बीहर रिपीट करण तो पे चाहें। मिल्क राइस ब्यूटी शो में ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिन, ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम है, मिल्क राइस ब्यूटी सोप है, मिल्क राइस एक्नी क्रीम है। अस अग में चाहिए कामा लगे कर बीहर चवे इतने चवे तो वाइटमिन सी भी अस है। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो अस उन गाल कई से तो उन्होंने दावा है खूबसूरती जो नजर आए भरोसा जो दिल जीत ले, पर ही जगह दावा है वह मां पैंजे तरफा भी कहां तो छाकाण तो ये पर्सनली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कयूं।

बिल्कुल, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम दावा नहीं दलील देते हैं, तो पो दावा के तव्हांखे कंहिंजी खे बि प्रूफ करणो हुजे त उनखां दलील वठिबी आहे। दलील जो तरीक़ेकारी हुआ असां वटि, त असांखे थोरी तव्हांजी सपोर्ट हेल्प खपे। उहा सपोर्ट हेल्प बि एतिरी खपे जो अव्हां ख़र्चु कयो पर पाण ते, इहो थोरो घणो अव्हांजो जेको पाण ते ख़र्चु थींदो उन सां जेको आहे त अव्हां असांखे दलील ॾियण जो मौक़ो ॾींदो।

जी दोस्तों, हिकड़ी कॉल हिकड़ो टैक्स भी आयो असांखे, ऐं असांखे टैक्स ॿियो बि आयो, उन्हनि बि असांखे टॉपिक जी ॻाल्हि ॿोल कई त पोइ असां टॉपिक उन्हनि खे ॿुधाए छॾियो त असांजो टॉपिक अॼु के प्रोग्राम में त स्पेशली सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ब्यूटी आहे, ब्यूटी ते ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं ब्यूटी ते ॻाल्हि ॿोल थियण लाइ इहो आहे त तव्हां असांखे, मां हिकिड़ी ऑडियंस खे अव्हांखे गिफ्ट कयो आहे हिकिड़ो टिप। टिप अव्हांखे यादि हुजे त उहो असां अव्हां खां सुभाणे वरी फीडबैक में बि ॿुधंदासीं। जिन दोस्तनि प्रोग्राम ॿुधो असांखे कॉल न करे सघिया, उहे सुभाणे उमेद कयूं था त प्रोग्राम में शामिलु थींदा ऐं असांखे मज़ीद नयूं टिप्स बि ॾींदा। अॼोको टॉपिक असांजो इहो आहे ब्यूटी टिप्स। ब्यूटी टिप्स जेतिरी बि ॼाण हुजे उहो ॿिए खे ॿुधाइजे, पर अॼुकल्ह थी इहे रहियो आहे त जेकॾहिं मां का शइ सुठी इस्तेमालु थो कयां त वरी उहो ॿियो इस्तेमालु न करे, ईअं कोन कबो आहे। ख़ूबसूरत तमामु सभई चहिरा आहिनि, ख़ुदा ख़लकिया आहिनि, उन्हनि सभिनी जो हक़ आहे त मज़ीद उन्हनि खे ख़ूबसूरत निखार आणण लाइ असांजो प्रोडक्ट। ऐं जेकॾहिं अव्हां उन्हनि खे राज़ रखणु चाहियो था त असां सरेआम GFM मैरापुर 94 ते ॿुधाए रहिया आहियूं त ब्यूटी आणण जो जेको तरीक़ेकार आहे असां वटि उहो ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस, ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस एक्नी ऐं मिल्क राइस सोप ऐं मिल्क राइस वाइटमिन सी इस्तेमालु कंदो त अव्हांखे ख़ूबसूरती 100% ईंदी। असांजो प्रोडक्ट्स मैरापुर शाही बाज़ार में दस्तियाब आहिनि। जेकॾहिं अव्हांखे आसानीअ सां उहे प्रोडक्ट खपनि त हेल्पलाइन नंबर आहे 03000310510। मलिक ज़फ़र इक़बाल साहब ऐं एम सिद्दीक़ साहब सां ॻाल्हि ॿोल करे अव्हां असांजूं प्रोडक्ट्स वठी सघो था।

ऐं असां अवां जो इंतज़ारु करे रहिया आहियूं, अवां जी कॉलिंग जो इंतज़ारु करे रहिया आहियूं। लाइव कॉलिंग नंबर जिन दोस्तनि एफ एम हींअर ट्यून कयो आहे उन्हनि खे ॿुधाईंदो हलां त मिल्क राइस ब्यूटी शो अवां ॿुधी रहिया ऐं आऊं आहियां आबिद चौहान। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03009319967।

दोस्तों बु प्रोग्राम में अवां सां गाल कई त मां तव्हां खे हिकु ॿ ब्यूटी टिप फ्री में ॾींदुमि, पर जेसीं ताईं अवां मूंसां ॻाल्हि ॿोल कोन कंदो, अवां मूंसां कॉल ते कोन ॻाल्हाईंदो, अवां मूंखे टैक्स वसीले अवां खां टिप कोन ॾींदो, त पोइ मां तव्हांखे इहे फ्री में टिप्स पोइ वन बाए वन हिकु हिकु ॾींदो हलंदुमि। ख़ैर अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, असां अवां खे टिप्स फ्री में ॾींदासीं ऐं लॻभॻि टाइम जेको आहे त अप थियण वारो आहे, 6 मिंट बचिया आहिनि। सो इन करे असां अॼोके प्रोग्राम में असां हिकिड़ो आख़िरी ख़ूबसूरत ट्रैक प्ले कंदासीं ऐं उनखां अॻु मां वंस अगेन रिपीट करणु चाहींदुमि त मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आउं हूंदुसि आबिद चौहान 8 खां 9 वॻे ताईं। मुंहिंजो अवां जो डेली रोज़ाना बेसिस ते मंडे टू सैटरडे साथ रहंदो ऐं अवां जी कॉलनि जो असांखे इंतज़ारु रहंदो। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-931-9667, इन ते कॉल करे असां सां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था। उन सां गॾो गॾु अवां असांजी हेल्पलाइन ते कॉल करे अवां असांजी प्रोडक्ट जे बारे में मज़ीद ॼाण बि वठी सघो था ऐं प्रोडक्ट बि वठी सघो था। हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109।

मैरापुर वारनि जे नाव सिंध धरती जो सुरीलो फनकार रजीब फ़कीर जी आवाज़ में ख़ूबसूरत ट्रेक इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा। वरी मुलाक़ात थींदी साॻे चैनल ते GFM 94 ते। तेसीं ताईं सिंध सलामत, साथ सलामत, अलाह निगेबान।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310 5109, 03000 310 5109।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
2: उनका सियासी कद। उस वक्त में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम लीग तब बनेगी जब जीएम सैयद मुस्लिम लीग बनेगी। उसमें आए जो मुहरक था 1943 की करारदाद का, जो पाकिस्तान बनाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार था, वो गदार बना। जिम्मेवार वो था या उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट।
3: सिंध से हमारे हिंदू भाई और मसीह भाई गए, मुझे आज वो बहुत याद आए कि काश अगर वो आज इस धरती पर मौजूद होते, मैं देखता कैसे लाहौर का एक बिजनेसमैन खड़े होकर इस मां धरती को तकसीम करने की बात करता है। वो सिंध का हिंदू, वो सिंध का मसीह आज इस मुसलमान के साथ मिलकर उसकी बुद्धि से खींचता उसकी जबान।
4: तो सिंध की जोग्राफिया हदूद है वो वही रहेंगी, बॉर्डर चेंज नहीं हो रहा।
5: यहाँ पर आप कितने सूबे बनाएंगे, 12, 10, 15? सर जो 4 हमारे सूबे हैं उसकी आवाम ने जो अपना वोट डाला था 2024 में, वो तो हक उनको मिला नहीं।
6: थरपारकर को सूबा बनना चाहिए। भाई मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, ना थरपारकर को होना चाहिए ना कराची को सूबा होना चाहिए। मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूँ, एक गवर्नेंस का बेहतर निजाम होना चाहिए।
7: सिंध असेंबली में नवन सूबा ने इंतजामी यूनिट्स बाबत रिथ ते बेदी भी बहस। सैयद नासिर सिंह शाह चयो त सिंधड़ी ते सिर केर नंदो सहंदो केर मयान, सिंध विराईंदे समझी विया हूंदा। अचो गर्जी सिद्धू देश ऐं जिनापुर ख़िलाफ़ करारदाद मंज़ूर कयूं। जिते सूबा ठाहिण जी करारदाद मंज़ूर थी उते भली सूबा ठाहियो, पहिरीं उते तरक़ी थिए पोइ असांखे अची चवजो त तव्हां तरक़ी खां रहिजी विया। जमील सुमरो चयो त पहिरियां कराची खे वफ़ाक़ जो हिसो बणायो वियो ऐं पाकिस्तान ठाहींदड़ जीएम सैयद खे अवां गद्दार ठाहे छॾियो। सिंध रुगो हिकु नक्शो न पर धरती, तारीख़ी ऐं आइनी वहदत आहे। एमक्यूएम जे मेंबर इफ्तिखार आलम चयो त इंतज़ामी यूनिटनि जी बहस खे रुगो सियासी नारे तौर न पर इंतज़ामी सुधारनि तौरु ॾिसणु घुर्जे। पीटीआई जे सजाद सुमरो चयो त बस अस्पताल संभाले न सघंदड़ वफ़ाक़ कराची खे पंहिंजे हवाले करण जी ॻाल्हि थो करे। इम्तियाज़ शेख चयो त पाणी ऐं ज़मीन सिंध लाइ रेड लाइन आहिनि। पाणी ऐं ज़मीन जी विर्छ जी ॻाल्हि कई वई त भरपूर मज़ामत कई वेंदी। एमकेएम जे तहा अहमद चयो त पीपल्स पार्टी पंहिंजे मेयर खे बि इख़्तियार न पई ॾिए। आइन जे आर्टिकल 140A ते ॻाल्हाइण ग़लति नाहे। डॉक्टर सोहराब सरकी चयो त जंहिं तरीक़े सां एमकेएम जे मेंबरनि ॻाल्हि कई आहे, उन मां लॻे थो त हू सिंध जो विरागो नथा चाहिनि। पीपी जे एजाज़ सवाती चयो त हिंदुस्तान लॾे वियल हिंदू ऐं ईसाई हिते हुजनि हा त सिंध विराइण जी ॻाल्हि कंदड़ वापारियुनि जी ज़बान चिके कढनि हा। सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमनि ते गौर। वरे वज़ीर तरमीमनि जो जाइज़ो वठण लाइ सूबाई वज़ीरनि ते वधल कमेटी जोड़े छॾी। सीनियर वज़ीर शजील नामेमर, नासिर शाह, सईद ख़ानी, जालंजार, नजमी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ती कंसल्टेंट मुक़रर। इजलास खे मकानी कानून में तरमीमनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा इख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो।
8: सिंध कैबिना बलदियाती निज़ाम में जेको आहे रिफॉर्म्स करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, छा मुशरफ तौरु आहे पुराणो निज़ाम बहाल पिया कयो छॾनि?
9: सूबाई असेंबली जो अख़्तियार
8: आहे मुशरफ तौरु
9: मुशरफ केरा मन सुजाना
8: केम जो प्रेशर आ ता ते या इस्लामाबाद जो प्रेशर आ पिंडी जो प्रेशर आ के जो प्रेशर आ ई निजाम अचानक के इमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल के वे सिंधा भी ना जी रिफॉर्म कर
9: प्रेशर जे करे हुजे आ तो सही न गलायो
10: जे करे के लगे तो सिंध में डिविजंस घटाइन जिला घटाइन तो गाल तो थी सके कि ना जिला ठाए सके था डिविजंस बढ़ाए सके था
11: सिस्टम फेल थी जे को चवे तो उनके मेहरबानी करे इस्तीफा देन खबे जन पुन सिस्टम में पाण आइन
12: आयो बरोच पर सिंधी आयूं सिंध में रहूं था सिंध सा मरंदासे सिंध सा जिया
13: उन्हें के वधिक एम्पावर करण खपे ताकि लोकल मान जा मसला हल जन सीएम साहब कमेटी ठाया सुठी गाला मतन मेरे हवाले सा पे नवाले सा उन जो हल भी इतनी निकलंदो
14: मुशरफ और दौर बिल्कुल बहाल न थी सके
15: पर जेके चेयरमैन आए ने या मेयर्स जेके ने वो कंटिन्यू कंदा जैसे नई इलेक्शन थे वो जरूर थो बाकी कुछ जेके अमेंडमेंट आइन वो असेंबली में इंदियो स्टैंडिंग कमेटी में इंदियो स्टैंडिंग कमेटी जेके रिकमेंडेशन कंदी
7: शासन में अगोणे आमर परेश मुशवर वारो मकानी निजाम बहाल थी रहयो आहे केटीए न्यूज़ जो सिंध काबीना जे मेंबर्स एनपीएस का सवाल निसार खोड़े चयो आहे त मुशरफ के नथो सुञाणा सूबे लाइ सिंध असेंबली को भी निजाम जोड़े सघे थी कंहिं जो भी दबाव नाहे निज़ाम जी बेहतरी लाइ केरु चवे थो त एतराज़ न हुअणु घुर्जे सूबाई वज़ीर सईद ख़ानी चयो आहे त सिंध में को भी पुराणो मकानी निज़ाम न ईंदो मकानी कानून में तरमीमन जी ॻाल्हि थी रही आहे निज़ाम तब्दील न थींदो सिंध में डिवीजन्स या ज़िला वधाइण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी एम पी एस सरदार चांडियो चयो त निज़ाम खे नाकाम छॾींदड़ गरु वज़ीर जी कुर्सीअ ते छो वेठो आहे मोहम्मद बख्श मेहर चयो त मकानी निज़ाम ते वधीक मुशावरत थींदी को बि दबाउ नाहे राजा रज़ाक चयो त निज़ाम तब्दील न पियो थिए सुधारा अचणु घुर्जनि मोहम्मद अली मलकाणी चयो त मुशरफ़ वारो मकानी निज़ाम न ईंदो
16: Water is the lifeblood of our region. It sustains millions of lives, nourishes our lands, and secures the very future of our coming generations. It must never be weaponized. It cannot be used as an instrument of coercion, nor can it ever be exploited for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both letter and spirit.
7: पाणी खिते जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो शंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरबाही इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुर्जे मका दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ नाहे इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त बि खिते में अमन जी बहाली लाइ अहम आहे दहशतगर्दी बि खिते जे संगीन खतरनि मां हिकु आहे पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे ॾखण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 21 दहशतगर्द मारिजी विया खारजी दहशतगर्दनि पारां कस्टम हाउस ते कब्ज़े करण जी बि कोशिश नाकाम आई एस पी आर पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त सिक्योरिटी फोर्सिस 31 अगस्त ऐं 1 सेप्टेम्बर जी विच वारी राति ऑपरेशन कया फोर्सिस क्वेटा तफ्तान क़ौमी शाहरा ते दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदे 11 दहशतगर्दनि खे जनम बीड़ो कयो कस्टम्स हाउस ते कब्ज़े वारी कोशिश बि नाकाम बणाई वई फोर्सिस जी जवाबी कार्रवाई में 10 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया दहशतगर्दनि जी फायरिंग दौरान ॿिनि कस्टम्स ऑफिसर्स समेत 6 जवान शहीद थिया

मुल्की राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसाति तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं किरण जे नतीजे में वॼणा पोत रोड रस्ता तलाउ जो ॾेख ॾियणु लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। E11 नालो भरिजण सबबि पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नाला लही में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं वाद पोश तलब। कॉल मंडी में ऐं कटारिया में बि सूरत हाल ख़तरनाक बणियल। पिंडी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलणु लॻियूं। बरसाती पाणी सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया। वफ़ाक़ी राजधानी इस्लामाबाद खे नई वफ़ाक़ी इंतिज़ामी यूनिट बणाइण लाइ मनसूबाबंदी वारी वज़ारत सिफ़ारिशूं तयारु करे वरितियूं। इस्लामाबाद जो इंतिज़ाम 27 मुख़्तलिफ़ शोबनि ज़रिए हलाइण ऐं सूबाई तर्ज़ ते 27 रुकनी असेंबली क़ाइम करण जी तजवीज़। लाइन ऑर्डर ऐं मास्टर प्लानिंग खां सवाइ इस्लामाबाद जो घणो इंतिज़ाम चूंडियल नुमाइंदनि ते ॿधल असेंबली ज़रिए हलाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई। 21 मेंबर सिधी रीति चूंडिया वेंदा। औरतुनि लाइ 5 ऐं अक़लियतनि लाइ 1 सीट हूंदी। वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल जो चवणु आहे त इस्लामाबाद जे मसलनि लाइ आवाज़ खणण जो को मौसर फोरम नाहे। वफ़ाक़ी हुकूमत खे सिधी रीति शहर जा मसला हल करण पवंदा। इस्लामाबाद में क़ौमी असेंबली जूं 3 सीटूं बरक़रार रहंदियूं। इस्लामाबाद में सियासी इंतिज़ामी सुधारनि लाइ क़ाइम कमेटी में हसन इक़बाल, मोहसिन नक़वी, राणा सनाउल्लाह, मुसद्दिक़ मलिक ऐं वफ़ाक़ी वज़ारतनि जा सेक्रेटरीज़ शामिल।

0: अॻूणे निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियासूम रख़्तियार ज़िले ऐं तालुके सतह ताईं मुंतक़िल करण जी हिमायत करे छॾी। सूबे खां ज़िले ऐं तालुके सतह ते फाइनेंस अवार्ड्स खे लाज़मी क़रार ॾियण जो मुतालबो। मोहम्मद मियासूम चयो आहे त इख़्तियारनि जे हेठी सतह ताईं मुंतक़िली सां बहितर हुकमरानी क़ाइमु थींदी ऐं अवामी मसला हल थींदा।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज
3: GFM 94 अड़ो को वाकई हुनर को जादू आ है जैसा असा रुगो खामोशी में कहजे दिल जी गाल असा समझी सगो जी। दोस्तों अख एड़ी शय आ है जेके दिल जो आईनो पण सडयो है। जस्ट सपोज मा एकड़ो उर्दू जो शेर वहां के बुधाय करे ताजे प्रोग्राम जो पूरो पैटर्न बुधाई दम। कहजे दिल में कहजे लाए छा लिखल है मोहब्बत है नफरत है या को क्यास है या कुछ का बी शे है उहा जानन लाए असा जोका तो नजी निगाह ना दिसदा हु त खामोशी सा कह शख्स के दिसी करे असा अज्यूम कंदा हु त मानु भलो तो लगे या मानु बेकार तो लगे कावड़ ती नजर छे या प्यार तो नजर छे उन जो सजो जोको दारो मदार उन जे अखन ते हुंदो आए। शायर चाहत खूबसूरत इन मंजर के एकड़ो रूप दिनो उन चो नजर ऊंची की तो दुआ बन गई असा निगाह मथे कंदाऊ जदे का सदा दींदाऊ जदे रब के बादाईंदाऊ तो समझंदाऊ कोई आहे असा के जको बुधी रहयो आ असा जी खामोशी में भी असा के समझी रहयो आ। शेयर कंप्लीट करे उन खा पो उन जी डेफिनेशंस आई असा वहां के कॉलिंग नंबर भी बुधाईंदा से पो गाल बोल भी थींदी है प्रोग्राम जो प्रॉपर्ली असा वहां के पैटर्न भी बुधाईंदा से। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई नजर नीचे की तो हया बन गई नजर तिरछी की तो अदा बन गई अगर नजर फेर ली तो कजा बन गई। शेर जो मकसद मतलब अवां खां भी जानना चाहिंदुमि ऐं माना चीज अवां खे थोरो घणो डिस्क्राइब करण जी कोशिश कंदुमि लेकिन असांजो अॼोको जेको प्रोग्राम आहे उहो टोटली डिपेंडेंट रुगो हिन हिकिड़े शेर ते नाहे उन में खोड़ सारी शामिल आहे शायरी। अवां जे दिलि जूं ॻाल्हियूं शायरी वसीले गीतनि जी झूंगार वसीले छाकाणि त मूं अॻु में बि चयो त शायरी अवां जे लफ़्ज़नि खे ख़ूबसूरत जेको आहे त हिकिड़ो लिबास ॾेई करे अवां जे महबूब ताईं अवां जे प्यारे ताईं पैगाम जी सूरत में पहुंचंदी आहे। असां जॾहिं रब ॾे गुफ़्तगू करणु चाहींदा आहियूं ॻाल्हि ॿोल करणु चाहींदा आहियूं त निगाह मथे हली वेंदी आहे डायरेक्टली हूअं त रब दिलि जे वेझो आहे बिल्कुल तमाम हर एक के दिल में रहंदो आए वेजो आए पर असा एकरो तसव्वुर आए त मथे आही सतह दे दिसंदाऊ उन खा पो जे करे हया जी गाल कजे तो वो अखियो झुकाए छरदाऊ तरह शायर चयो त निगाह नीचे की तो हया बन गई आ वरी चयो तो नजर तिरछी की तो अदा बन गई मा ते पहजो एक्सप्रेशन अवा के दिखाए कोन तो सगा अवा जरे कह शरारती बार के या कह प्यारे मानू के कह मर्द के न चवा के छोकरी के चाकार त ये अदाऊ सुहन थू छोकरन के सो उए नाटी अंदाज में निगाहों के हेदा खा होदे राइट एंड लेफ्ट फेराई गुन तो उन के चयो दुआ त नगर नजर तिरछी की तो अदा बन गई वरी चयो तो नजर फेर ली तो कजा बन गई मगर जे करे मतलब उन जो मतलब आ है जे करे कह खा कह जो प्यारो मुंह मटे छदे चेहरो फेराए छदे नजरो फेरे छदे तो उन जे लाए त कजा थी कजा मतलब मौत अची वई

जिन दोस्तों असा के ही ट्यून किया है उन वंस अगेन वेलकम भलीकार खुशामदीद चूं था प्रोग्राम दिल की गाल नव का यारह वगे ती अव गड हों असा अवां के पैंजो कॉलिंग नंबर बुधायूं था असाजो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488 इनते कॉल करे अवां पैंजे दिल जी गाल करे सको था अजो को जो असाजो टॉपिक रहंदो अवां सा अवां जे दिल जी गाल करण लाए बुधण लाए अवां जो तारुफ थींदो अवां सा गाल बोल भी थींदी असा नंडी नंडी असा जी अवां का फरमाइश हुंदो अवां जी फरमाइश भी प्रोग्राम में शामिल हुंदो अजो को असाजो टॉपिक आहे त छा शायरी वसीले पंहिंजी दिल जी गाल बे ताई पहुंचाए सकजे थी ऐं शायरी असांजो मुआशरे ते कहिड़ो उनजो किरदार आहे शायरी कहिड़ो पंहिंजो अक्स छॾे थी शायरी जी कंट्रीब्यूशन छा आहे असांजे मुआशरे में इन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी शायरी आहे छा शायरी जो कंट्रीब्यूशन असांजे मुआशरे में छा आहे छा शायरी वधीक मां कोन थो चवां त छा शायरी उहो अवां ॿुधाईंदो त शायरी आहे छा ऐं शायरी जी कंट्रीब्यूशन असांजे मुआशरे में आहे छा असांजो अॼोको टॉपिक इहो आहे बाक़ी उन खां एंड में असांजो को न को हिकिड़ो मैसेज हूंदो अवां दोस्तनि जे मैसेज ऐं सुठा कोटेशन्स उहो मैसेज वसीले बि असांखे अवां माणे सघो था लाइव कॉलिंग ते बि असां सां गॾु फीडबैक ॾेई सघो था लाइव कॉलिंग जो नंबर मां वंस अगेन रिपीट कंदो हलां 03000113488 इन ते कॉल करे अवां असां सां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था

0: इन ट्रैक सां गॾु वेंदासीं हिकिड़े नंढड़े ब्रेक ते ऐं नंढड़े ब्रेक खां पोइ बैक थींदासीं आवाज़ सां कबूल खोड़ सारियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा रहो ZFM 88 नेटवर्क
1: मोरो नौशहरो मीरपुर खास
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा अंसार

0: क्या बात है जी, लव यू, सलामत हो जो। प्रोग्राम दिल जी गाल में भली कर प्यारा। प्रोग्राम कें पे लगे
1: मेहरबानी हो आज प्रोग्राम असा रिपीट में कर बुदी रहा है। दिल जी गाल है कवा जी की गाल कोई बात असा दिल जी आनंद की गाल
0: है। बिल्कुल असा जी कोशिश या हुंदी त दिल जी गाल और आगे जो वडड़ा वेंदा हा मच कचेरी ते डाठो गदु वेंदा एक बे सा हाल ओरिंदा। आज असा मोबाइल में गुम थिया सो असा इन करे आया हूं आवा के जगण लाए त थोरो
1: बाहर आज तवा गाल को भाई आज कल के दौर रो छ है जो ओटा क ने नी किते सा गाल बोली दा हा इंतजाम पे होले वा मोबाइल थियो जी में सब का मोबाइल खायो।
0: वाह वाह बिल्कुल हकीकत है। पर असा तदें भी कोन मुड़ंदे असा पैंजे नस्लन में पैंजे बचड़न में पैंजो कल्चर पैंजी सकाफत इंशाल्लाह जीरे रखने की कोशिश कंदे अवां जड़न महबूबन के थ्रू। अजो के असा जे टॉपिक ते मु चूंड कई है कोशिश कई है तो टॉपिक अड़ो बास रखजे जो को आखिर में को रिजल्ट निकरे। मु टॉपिक रखियो तो शायरी जो कंट्रीब्यूशन छाए मुआशरे में शायरी जो किरदार छाए शायरी छाए
1: उस्ताद जो घर है
0: मतलब शायरी उस्ताद भी है शायरी घणो कुछ सिखाए भी थी।
1: बिल्कुल शायरी सिखारे भी है शायर भी के अजकल जी अब्दुल लतीफ बिटे रमतला ने आए दिस तो वो जिसके रिसाल आए जिसके भी नहीं जारी हैं सब समझी वाली वाली है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मुर्शिद लतीफ को आता है भाई जी जी
1: ये को कलाम आया कि जय रमे पानी पानी रमी जर तू तस्वीर ये कलाम आए को ना समझे तो जो आवाज आए ना मेरे चैनल ये आई कलाम में तो प्यार वाली गुजरे रहे
0: हैं यू प्ले कंधा से लव्स भी है रिपीट कर जो तो मैं कोशिश किया तो पंजी प्ले लिस्ट में इनके शामिल किया
1: बाकी जय जर में अखड़न में पान अखड़न में पानी की जर में तुम्हें तस्वीर
0: किंजर में तुझी तस्वीर आ मायन के सर्च किया तो गले तो ता तेसी थाई थोरो असाय टॉपिक ते वधिक गाल जगन कर सको त या पैगाम छ देण चाहिदो पंजो मैसेज छ देण चाहिदो दोस्तन सा कैसा गाल बोल असाय प्रोग्राम वसीले।
1: बिल्कुल दोस्तन में मुझे पैगाम यो आए त मोहब्बत उरायो है मोहब्बत मजो आए नफरत में कुछ भी करनाए रखियो रावा।
0: बिल्कुल
1: आए मोहब्बत पायो मोहब्बत वरो मजो आए मोहब्बत में इंसान जो को इंसान जी की
0: माशाल्लाह
1: जो ताज असन को मखसूस थे तो या सके
0: वो छब थे पेरा
1: लटक को बना तो ताज लेगी मगर ताने सब मखसूस थे तो
0: असा के तमाम इंतहाई अवा मजा प्यार जी जगह तो वास अची रही है मोहब्बती मानु आयो जस एकड़ो यो हेलो हाय जो जरियो है त कोन को जाहिर है इंसान जो कमकार हुंदो है मौला सब
1: ने असा असा नल्ला मानु मिटी है रे मानु का असा रे की दुनिया पुरा लसन भयो हमारी गुरु पेट में गिरे मई बाला जालवा को
0: मुझो प्रोग्राम जो दिल जी गाल है अज उन जी इते स्टार्टिंग है इब्तदा है इन में एफएम 88 ते
1: अज बिल्कुल का पहला प्रोग्राम है
0: जी जी मुझो पहला प्रोग्राम आ अमा जो जगह तावन साथ रहो मोहब्बत रहियो तबो इंशाल्लाह असा जो रेगुलर आहे हु भी अन्या कंटिन्यू रखदा से ने के 9 खा 11 बजे तई आहे मुजा बा।
1: बिल्कुल का अचानक आवाज भी दो भी इवर का जो पाजे को
0: सलाम को न्यापो के दोस्त के देन चाहो तो वरी ता जो असा जो का तो कोशिश के तो ट्रिक भी प्ले कियम
1: कलाम जरूर बुधाय जो असा के जर में पार की तस्वीर कलाम प्यार हो अभी पसंद कलाम है।
0: बिल्कुल कोशिश हुंदी असा जी
1: अबे दोस्त जे के समा तो गलो सबन सलाम मोहब्बत
0: लव यू थैंक यू वेरी मेहरबानी प्यार
1: लव यू।

0: हिकड़ी असां कॉल रिसीव कंदासीं, कॉल खां पोइ असां ब्रेक ते वेंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ असां दोस्त जी फरमाइश पूरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम साईं, किथां खां?
1: वालेकुम सलाम।
0: प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि में वेलकम बलीगार, ख़ुशामदीद पहिरां। सखर मां केरु पिया ॻाल्हायो सुणा? साईंदाद ब्रोही। साईंदाद ब्रोही, प्रोग्राम कीअं पियो लॻे दिलि जी ॻाल्हि? पक सां इहा दिलि था रखो असांजी? शुरू खां ॿुधो पिया जीअं ट्यून कयो आहे 9 वॻे खां ॿुधो पिया, त असां हिकिड़ो हिन जो टॉपिक बि रखियो आहे, उहो तव्हांखे यादि हुजे त रिपीट कयो। शायरी जो मुआशिरे ते कहिड़ो असरु आहे, मुआशिरे ते कहिड़ो किरदारु आहे, छा थी ॾिए असांखे? मूं त हिकिड़ो नज़म बि उहो पढ़ियो, मां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि कई, अवां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि कयो असां ताईं। पर का फर्म फज़ीलत वारी शइ बि हुजे न? अॼुकल्ह मुआशिरे में तव्हां ॿुधो रहिया आहियो त शायरी अहिड़ी बि त न हुजे न जेका मुआशिरे में बिगाड़ आणे। ऐं कुझु गीत तव्हांजी नज़रनि मां अहिड़ा बि गुज़रिया हूंदा जेके धमकियूं, धमान, दड़का, दाबान, शायरी को मैसेज हुजे? क्या बात है, लव यू। छा कंदा मुंहिंजा
1: भाउ?
0: कचियूं सिरां, उनखे पको न कंदा
1: आहियो?
0: पकियूं केरु कंदो आहे, पोइ तव्हां त कचियूं कंदा आहियो न? मुंहिंजा भाउ कचियुनि सिरनि खे तर कयो अथव कॾहिं? अच्छा, वरी बाहि में विझंदा। असांखे को हुकुम अवां जो, को पैगाम, को न्यापो? जी कयां जी, नंबर त तव्हांखे यादि आहे मुंहिंजे ॿुधाइण खां अॻु में? बिल्कुलु लॻी वेंदो दिलि सां, जेकॾहिं यादि कंदो त थोरो घणो इंतज़ार बि कंदो ऐं इन बहाने सां प्रोग्राम बि ॿुधंदा रहंदो। प्रोग्राम ॿुधंदा रहो, ब्रेक ते वेंदासीं, ब्रेक खां पोइ जेको आहे हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रैक प्ले कंदासीं। वॾी महिरबानी प्यारा, लव यू, लक लाइक।

जिंदगी खास कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सागर आओ आया आबिद चौहान आया आओ बुधी रहे आओ GAFM 88 नेटवर्क प्यार जो कैसा पेच मा पाए बैठो आ प्यार जो कैसा पेच मा पाए बैठो आ पत्थर जे बुत खा आस लगाए बैठो आ प्यार जो कैसा पेच मा पाए बैठो आ पत्थर जे बुत खा आस लगाए बैठो आ पूछा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू पूछा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू मा जहजी खातर पान भुलाए बैठो आ प्यार जो कैसा पेच मा पाए बैठो आ प्रोग्राम में मुझो आए अमा जो साथ रह दो यार वगे ताई एक बो कॉल असा अमा जो अटेंड के अमा के पजो कॉलिंग नंबर बुधाई दासे पर बुधाई ना में कॉल अच्छी रही आए कॉल मिस थी रही अगे अच्छी रही आ अच्छा जो सिलसिलो हल दो रह दो अमा सा गालू दिल जो थी दो रह दो कॉल रहे ना सा लगत मौजूद अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथा खा
1: जी वालेकुम सलाम सर
0: पारा किथा खा केयर
1: जी सना मोहम्मद आकर खासकिल से गाल आया वो सुबहादर खासकिल शहर जो ही का
0: जोही का वाह वाह क्या बात है जोही जो को आता असा जे मशहूर शायर जो आता कंबराणी जो आहे शहर उन जो जिक्र थेरा जोही दादू आंदे सफा पेरे प्यादे असा मानू सिद्ध दे सफा सिद्ध सादे क्या बात है वेलकम भलीकार खुशामदीद प्रोग्राम में प्रोग्राम के भी लगे प्यारा
1: जी प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है जितनी तारीफ सजे थी
0: कट्टा दिल सा सच बताए जो
1: जी सर बिल्कुल प्रोग्राम तमाम बेहतरीन
0: है नूर सा सफा नूर ते क्या बात लव यू प्यारा बड़ी मेहरबानी अज को असा जो टॉपिक जो है वो तुम बुध हों प्रोग्राम से करे बुधी रहा हो
1: जी सर हाँ चून किया
0: हाँ चून किया है तो असा अवे बुधाइंदा हलूँ तो मुआशरे में अवा बुधी रहा हो खोड़ सारा जो फनकार खोड़ सारी वो फनकार सब कुछ शायरी गाए रहा हूँ असा प्रोग्राम दिल की गाल जो है वो है सजो प्यार मोहब्बत अमन ए शायरी ते शायरी दिल की गाल आसान तरीक़ेकार है जो पुजाई है वो शायरी जो जिक्र मु तो शायरी जो मुआशरे में किरदार है सवाल सोलो आ रुको आ बेहतर किरदार तो जैसे आस पास इर्द गिर्द माहौल में जी गीत बुधी रहा हो समझो था तो वो पॉजिटिव सही किरदार पहुंचाए रहा पो मां कहीं गीत के कोड को न कदम तहां बुधी रहा हो
1: शायर तो रहा है केवल शायर सही पहुंचा रहे हैं बिल्कुल
0: अवा जो को पसंदीदा शायर उन जो नाम खण चाहिदो
1: बुखारी
0: अवामी शायर है ऐं बुखारी चयो त मां सिंध ऐं सूंहं जो आशिक़ु आहियां कंबराणी बि बिल्कुलु मूंखे ईअं ई सवलो ऐं अवामी शायर लॻंदो आहे उन जी ॻाल्हियूं ॾाढियूं प्यारियूं थियल आहिनि जीअं अॻुणे सुट ॿुधाई त असां माण्हू सिंध दे सफ़ा सिधे सादे अहिड़े तरीक़े सां कंबराणी तमामु प्यारो प्यार जो पैगाम ॾिनो आहे चार भेरा हूं चारे छड़े हूं ॾाढी नकी नानी कुकड़ कबाब असांखे ॼाणूं नकी पले दी आनी लसी नल खा मानी अहिड़ियूं पहिरियूं पहिरियूं कंबराणी ॻाल्हियूं कयूं आहिनि ॾाढी ख़ुशी थी अवां सां ॻाल्हि ॿोल करे असां हिकिड़ी ब्रेक ते वेंदासीं पहिरां जेकॾहिं का फरमाइश आहे त ज़िक्र करे सघो था असां सां मंज़ूर सखीराण जे आवाज़ में अनवर कमराणी जो भला हाणे तव्हांखे मतिलबु यादि अचे मंज़ूर जे करे को झुंगारे ॿुधायो मंज़ूर जो गीत भला अनवर जे शायरी पैगाम
1: सभिनि सां प्यार मोहबत कयो प्यार मोहबत सां रहो
0: साईं बिल्कुलु असां त अॻु में बि बयानु करे चुकासीं त मां सूंह वारनि जो ग़ुलाम आहे, कंदो आशिकनि जो एहतराम आहे, लॻंदी नाहे पंहिंजे कंहिं बि अमीर सां, दिलि फ़क़ीर जी आहे फ़क़ीर सां। लव यू पहिरां शादि हुजो, आबादु हुजो ऐं ॿुधंदा रहो
1: जीए।
0: लव यू, थैंक यू।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका जा एक भेरो बीहर ईरान ते हमला बंदर अब्बास चाबहार केशम ए कोनारक बेट तमाकन सा गूंजी उठिया। अमरीकी अहदेदारन हमलन की तस्दीक कर अमरीकी जहाजन के हमले के जवाब में ईरान मथा हमला क्या व्या अमरीका विच ओभर में मौजूद पैंजन शहरियन के मोहतात रहने की हिदायत भी करी।

0: Beijo.
1: न्यूयॉर्क जे टाइम्स स्क्वायर ते चाकू बरदार औरत जे हमले में बैंक ऑफ अमेरिका जी नायब सदर मारजी वही। टाइम्स स्क्वायर ते एक औरत बिन मानन ते चाकून सा हमलो करे दिनो। नतीजे में बैंक ऑफ अमेरिका जी 32 वर्ष जी नायब सदर एरन प्यासेंटी मारजी वही। अमेरिकी मीडिया मुजिब 49 वर्ष जी औरत पहिरिया एक 68 वर्ष जे शख्स ते चाकू सा हमलो कयो, जंहिंखां पोइ हिन एरन प्यासेंटी खे पिण चाकू हयो। पुलिस अहलकारनि जवाबदार औरत खे लॻभॻ 4 मिंटनि ताईं चाकू फिटा करण लाइ चयो, पर हुन इनकार कयो ऐं पुलिस अहलकारनि ॾांहुं चाकू खणी वधी। जवाबदार औरत खे काबू करण जी कोशिश नाकाम थियण खां पोइ पुलिस फायरिंग करे खेसि मारे छॾियो।
2: सिंधु देश के नजरिए के खिलाफ है, लाए खरादा सिंधु देश के खिलाफ,
3: सिंध की तकसीम के खिलाफ, सिंधु देश के खिलाफ, जिनापुर के खिलाफ, और जो बार बार बात होती है इख्तियारात की, रेगुलेशन की, मैं कहता हूँ आए मिलकर पास करते हैं।
4: सिंध सिर्फ एक नक्शा तो नहीं, ये तारीखी आईनी वहदत है, ये सकाफत है, ये धरती है। साईं जी एम सैयद बड़े मुतबर, उनका सियासी कद उस वक्त में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम लीग तब बनेगी जब जी एम सैयद मुस्लिम लीग बनेगी, उसमें आए। जो मुहरक था 1943 की करारदाद का, जो पाकिस्तान बनाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार था वो गदार बना, जिम्मेवार वो था या उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट।
5: सिंध से हमारे हिंदू भाई और मसीह भाई गए, मुझे आज वो बहुत याद आए कि काश अगर वो आज इस धरती पर मौजूद होते, मैं देखता कैसे लाहौर का एक बिजनेसमैन खड़े होकर इस मां धरती को तकसीम करने की बात करता है। वो सिंध का हिंदू, वो सिंध का मसीह आज इस मुसलमान के साथ मिलकर उसकी बुद्धि जब से खींचता उसकी जबान।
6: तो सिंध की जोग्राफिया हदूद है वो वही रहेंगी, बॉर्डर चेंज नहीं हो रहा।
7: यहाँ पर आप कितने सूबे बनाएंगे, 12, 10, 15? सर जो 4 हमारे सूबे हैं उसकी आवाम ने जो अपना वोट डाला था 2024 में, वो तो हक उनको मिला नहीं।
8: सर पार कर।
9: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
10: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।